FM FM 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के चैस्ट मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया

0: और मध्यपूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FMN पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना समूह स्वर में ये देशगान। लीजिए अब सुनिए प्रहलाद शिंदे के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आज की कड़ी में आलेख बी के मंजुषा का है।
1: भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मनुष्य मात्र की कल्याण भावना निहित है। यहाँ जो भी काम होते थे वे सदैव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की दृष्टि से ही होते थे। यहाँ की संस्कृति भारत की आदर्श संस्कृति रही है। इस संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र उद्देश्य पर आधारित थी। मानव जीवन की सार्थकता और मानवता का उद्देश्य इसी में ही है। वह स्वयं अपना कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण सोचे। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकारी मनुष्य स्वार्थ के कीचड़ से सदैव दूर रहता है। परहित साधन ही पुण्य है और अहित करना ही पाप है। इसीलिए कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। इस संसार में स्वयं और पर का भेद ही सांसारिक माया है। मनुष्य अधिकांश कार्य स्वयं के लिए ही करता है, किंतु स्वयं की संकुचित सीमा से निकलकर मनुष्य अगर परोपकार की भावना लेकर चलता है तो यही मानवता है। मानव और मानवता में उतना ही अंतर है जितना कि मिट्टी और उससे बने हुए प्याले में। वृक्ष एकेंद्रीय कहलाता है। ग्रीष्म के भयंकर ताप को वह स्वयं सह लेता है, किंतु अपने शरण में आने वाले

0: को वह शांति और शीतलता प्रदान करता है। गुलाब के पास कोई पहुंचता है तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। पृथ्वी आधार है, पानी पेय है और पवन हमारा जीवन है। इन सब का कितना उपकार है हम पर। सचमुच जीवन के उत्सर्ग में ही जिसने जीवन का आनंद माना है वही जीवन का सच्चा कलाकार है। जिसने परोपकार के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया वह पैर होते भी पंगु है। मानव होकर भी जिसमें मानवीयता नहीं तो उससे बबूल के कांटे भी श्रेष्ठ हैं। हमारे देश में महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जिसकी परहित वृत्ति में स्वार्थ के कीचड़ की एक काली रेखा भी नहीं है। दुनिया उसी को हृदय समर्पण करती है। परोपकार का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि भूखे को भोजन दे दिया, प्यासे को पानी। परोपकारी की सेवा केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि अपने सकारात्मक सोच के द्वारा वह अनेक आत्माओं को शुभ भावना एवं शुभ कामनाओं का योगदान देता है। साथ साथ मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। परोपकारी सदा स्व के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना रखता है। सदा प्रसन्न रहना, औरों को भी प्रसन्न रखना, यह उनके जीवन की विशेषता होती है। इसलिए अनेकों के दुआ के पात्र बन जाता है। इसलिए कहा भी गया है, खुशी जैसी खुराक नहीं, दुआ जैसी दवा नहीं।
1: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आलेख बी के मंजूषा का था। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायन स्वर सुरेश वाटकर का है। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा कार्यक्रम विवरण के तहत। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

सुबह 7:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 7:20 पर सुनिएगा विविध जानकारियों, सूचनाओं और गीत संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।

सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। सुबह 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगे तलत अजीज़।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम महिला जगत। सुबह 9 बजे सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे फोन कॉल्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। आज के इस कार्यक्रम के लिए फोन कॉल्स पर बातचीत की है हमारे साथी मनोज सचदेव ने।

दोपहर 11 बजे से सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोता साथियों, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम की। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

एफएमएन पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

किशोर कुमार और आशु भोसले के युगल सुर में अभी आपने फिल्म लावारिस का ये गीत सुना। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। सुनवा रहे हैं अब आपको खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत उषा मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुर में। बोल गुलजार के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत। सुना रहे हैं अब आपको मुकेश के स्वर में फिल्म मधुमती का ये गीत। गीत शैलेंद्र के लिखे हुए हैं और संगीत है सलील चक्रवर्ती का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में गीतकार इंदिवर का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है खुदगर्ज।

0: तोरी खुशी खुशी है हमार।
1: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 7:10 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्षेत्रीय समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहाँ औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 1-9-11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक

एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न

0: प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। ये खुला मंच होगा जिसमें जन प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार ID निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल

स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगरमालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: FM पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार बालाघाट कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का हार्दिक अभिनंदन आपके रेडियो मित्र ब्रजेश शिवहरे और आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से, जिसमें हमारे आज के तकनीकी सहयोगी हैं राकेश वर्मा और मुकेश कोष्ठा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला था, जिसे उन्होंने टेलीफोन का नाम दिया था। भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ ईरानी फतवे के बाद ब्रिटेन और ईरान के बीच राजनीतिक संपर्क टूट गया। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्वोत्तर ईरान में बाढ़ आई। गुजरात की हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गंभीर चिंता जताई। नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा ने इस्तीफा दिया और रूस के पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल हल्फ 8 का परीक्षण किया गया।

दोस्तों, ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 7 जून वर्ष का 198वां दिन है और साल में अभी और 207 दिन शेष हैं। बात करें अगर हम महत्वपूर्ण घटनाओं की, तो बक्सर के निकट चौसा के लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। मुगल बादशाह शाहजहां की बीबी मुमताज बेगम की बुरहानपुर में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया।

आज ही के दिन नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। स्वेन के कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता था आज ही के दिन।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबाला रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रीलंका में प्रचलित आव्रजन नियम निरस्त हुआ था आज ही के दिन, यानी कि 7 जून को। एक अमेरिकी अदालत द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 2 भागों में बांटने का निर्देश दिया गया था। इजरायली मंत्रिमंडल ने गाजा क्षेत्र से बस्तियां हटाने संबंधी प्रस्ताव को आज ही के दिन मंजूरी दी थी। भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया गया था आज ही के दिन। सन 2007 में अमेरिका ने सऊदी अरब के राजदूत रहे प्रिंस बांद्रे बिन सुल्तान के हथियारों की दलाली में करोड़ों पाउंड के घोटाले का आज ही के दिन खुलासा किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से समाप्त किया था आज ही के दिन।

दोस्तों, अब बात करते हैं आज जन्म लेने वाली प्रमुख हस्तियों के बारे में। भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतिल का आज ही के दिन 1998 में जन्म हुआ। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति जी का आज ही के दिन जन्म हुआ। अमेरिकी प्रसूति एनेस्थिस्ट थी वर्जिनिया एबगर का आज ही के दिन जन्म हुआ। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। अब्बास साहब का जन्म 7 जून 1914 को हरियाणा राज्य के पानीपत में हुआ। वे ख्वाजा गुलाम अब्बास के पोते थे, जो 1857 के विद्रोह के शहीदों में से एक थे। उनके पिता गुलाम उस सुप्तैन थे जो उन्हें पवित्र कुरान पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, जबकि मसरून खातून उनकी माँ थीं। अपनी आरंभिक शिक्षा के लिए अब्बास साहब हाली मुस्लिम हाई स्कूल गए, जिसे उनके परदादा यानी प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द द्वारा स्थापित किया गया था। पानीपत में उन्होंने 7वीं की कक्षा तक अध्ययन किया। 15 वर्ष की आयु होने तक मैट्रिक समाप्त की और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में BA और LLB पूरी की। वह अपने जीवन के अधिकांश कार्यों में सफल रहे थे। उनके सुकोमल प्रेम प्रसंग के परिणाम स्वरूप मुक्तजवी बेगम के साथ विवाह का अति सुंदर वर्णन आत्मकथा I Am Not Island में उन्होंने किया है। यह एक सफल प्रेम विवाह था। अब्बास साहब ने जल्द ही एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू कर दिया था। उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन नाम की देश की पहली छात्र प्रकाशित पत्रिका शुरू की। इसके पहले उन्होंने अपने BA के बाद नेशनल कॉल नाम के अखबार में भी काम किया था। 1945 में ख्वाजा साहब का एक निर्देशक रूप में कैरियर शुरू हुआ, जब उन्होंने इस्टा के लिए धरती के लाल नाम की एक फिल्म बनाई। यह 1943 के बंगाल के अकाल पर आधारित थी। 1951 में उन्होंने नया संसार नाम की अपनी खुद की कंपनी खोली, जो अनहोनी जैसी सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों का निर्माण करने लगी। अब्बास साहब की फिल्म राही मुल्क राज आनंद की कहानी पर आधारित थी, जिसमें चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा को दर्शाया गया था। चेतन आनंद के लिए नीचा नगर लिखने से पहले अब्बास साहब वी शांताराम के लिए डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी भी लिख चुके थे। यह फिल्म ख्वाजा साहब की एक कहानी एंड वन डिड नॉट कम बैक पर आधारित थी, जिसे उन्होंने डॉक्टर द्वारगनाथ कोटनीस के जीवन पर लिखा था।

ख्वाजा साहब ने अति सफल फिल्म निर्माता निर्देशक राज कपूर के साथ एक लंबा साथ निभाया और आवारा श्री 420, जागते रहो मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी उनकी कई सफल फिल्में भी लिखीं। आर के बैनर की फिल्म हीना, जिसे रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित किया गया था, इसमें भी अब्बास साहब की ही कहानी थी। अब्बास साहब ने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत और अंत भी लिखा था। यह एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। राज कपूर

ख्वाजा साहब के करीबी थे और उन्हें मेरी आवाज़ बुलाया करते थे। उनके अपने जीवन पर बनी फिल्म मेरा नाम जोकर के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर वित्तीय संकट में फंस गए थे। अब्बास साहब ने सिर्फ इस असाधारण निर्देशक की मदद करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया। उन्होंने एक मसालेदार किशोरावस्था के रोमांस की फिल्म बॉबी लिखी। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और राज कपूर फिर से सफलता की लहरों पर सवार हो गए। लेकिन बॉबी में भी अब्बास साहब अपने समाजवादी दृष्टिकोण और अपने प्रगतिशील विचारों को स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने इसे फिल्म की विषय वस्तु में रूपित कर दिया। अपनी चमकदार सतह से नीचे यह अमीर और गरीब के संघर्ष की कहानी कहती है। यह सामाजिक वर्ग भेद और अंतर्राज्यीय विवाह की बात करती है। हालांकि अब्बास साहब भी मानते थे कि उनके राज कपूर के काम करने के अंदाज में कुछ फर्क जरूर था।

शहर और सपना के अलावा बादशाह की दो फिल्में सात हिंदुस्तानी और दो बूंद पानी ने राष्ट्रीय एकतरफा बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीते। नीचा नगर अंतर्राष्ट्रीय ख्वाति जुटने में कामयाब रही और इसके कांस फिल्म समारोह के पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता। दूसरी ओर परदेसी ने भी इसी पुरस्कार के लिए नामित होने में सफल रही। इन सब पदकों और पुरस्कारों के अलावा उन्हें 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनको मिले कुछ अन्य पुरस्कार थे साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हरियाणा स्टेट रोब ऑफ ऑनर, उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए गालिब पुरस्कार, उर्दू अकादमी दिल्ली का विशेष पुरस्कार और महाराष्ट्र राज्य का उर्दू अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। अंतिम दिनों में दो दो दिलों के हार्ट अटैक के बावजूद अब्बास साहब अपनी फिल्म एक आदमी की डबिंग को जारी रखे हुए थे। यह फिल्म उनकी मृत्यु के बाद प्रदर्शित हुई। फिल्म किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए, ये उनका कहना था। अब्बास साहब का मुंबई में 72 वर्ष की आयु में 1 जून 1987 को निधन हुआ।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट।
0: यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की

0: सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
3: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने

0: मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और छप्पन्त अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के

0: और वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय

0: होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएमएन पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं तलत अजीज।

इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। इन पंक्तियों के साथ स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आप ही के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत के इस अंक में। आज इस कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा सफ़र आप तय कर रहे हैं अपनी ही रेडियो सखी भूमिका के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अक्सर आपने अपने घर के बुजुर्गों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। जी हाँ साथियों, हम जैसे हैं, हमारे आचार विचार जैसे हैं, उसमें हमारे खान पान का सबसे अहम रोल होता है। इंसान का सबसे सच्चा और ताउम्र साथ निभाने वाला साथी होता है उसका अपना स्वास्थ्य, और ये स्वास्थ्य मिलता है उसे अपने खान पान की आदतों और आचार विचारों से। जी हाँ साथियों, दुनिया की धन दौलत, यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि साथियों, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी हमारा मन प्रसन्न होता है। आप ही सोचकर देखिए ना, दुनिया की हर खुशी, हर धन दौलत मिल भी जाए, लेकिन उसे भोगने के लिए आपका अपना शरीर स्वस्थ ना हो तो इन चीज़ों का क्या ही मोल रह जाएगा आपके जीवन में। इसीलिए शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए हमेशा अपने खान पान पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को कभी भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये लापरवाही कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य को हमेशा अपने जीवन की पहली प्रायोरिटी माने, क्योंकि स्वस्थ रहना, खुश रहना आपकी खुद की असली जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, और ये अच्छा स्वास्थ्य आपको आपके बुढ़ापे तक काम आएगा। स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक सोच, ये तीन बातें अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए, ये आपके जीवन भर काम आएंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और खान पान की, तो हम आपको बताते चलें, आज यानी कि 7 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। जी हाँ साथियों, इस दिवस का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों, उनसे बचाव और सुरक्षित पौष्टिक भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि सुरक्षित भोजन केवल बीमारी से बचाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की नींव भी बन सकता है। तो आइए इन्हीं सब बातों के बीच में अब थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस समय गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में खान पान का और पहनावे का, खासकर हमारी जीवन शैली का हमें विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो बीमारी होते देर नहीं लगेगी। और इस मौसम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में खासकर डिहाइड्रेशन की बहुत समस्या हो जाती है लोगों को, तो इससे कैसे बचें और इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किस तरह की सावधानियाँ रखें, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित सचदेव को, गर्मी की कहानी डॉक्टर रोहित सचदेव की जुबानी।
1: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको जानकारी दूंगा कि कैसे हम भारत की गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखें। अक्सर लोग गर्मी को काफ़ी हल्के में लेते हैं, लेकिन हर साल हजारों लोग डिहाइड्रेशन, हीट और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। गर्मी में हमारा शरीर

शरीर लगातार पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में शरीर से पानी और कई मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में अच्छा खान पान, सही कपड़े पहनने का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गर्मी में शरीर को ठंडक कैसे रखना है, उसे ऊर्जा कैसे प्रदान करनी है अपने शरीर को। सबसे पहले आप मौसमी फल खाएं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम, मौसम्बी जैसे फलों में काफ़ी मात्रा में पानी रहता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखता है, काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत को पूरा करता है। फिर दही और छाछ का सेवन भी करना काफ़ी अच्छा रहता है, इससे पेट ठंडा रहता है, पाचन भी बेहतर रहता है। गर्मी में आप 1 गिलास छाछ पियेंगे तो वो आपको एक जो महंगे एनर्जी ड्रिंक रहता है उससे आपको ज़्यादा फायदेमंद आपको फ़ायदा देगा। नारियल पानी पी सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ये शरीर में सोडियम पोटेशियम दूसरे मिनरल्स को भी पूरा कर देता है। फिर हमारे जो घर में जो हम रेगुलर बनाते हैं, जैसे नींबू पानी, आम पना, सत्तू का शरबत, बेल का शरबत, जलजीरा, ये सब भी काफ़ी लाभकारी होते हैं। ये आपको शरीर को ठंडकता भी देते हैं, साथ साथ अच्छी एनर्जी भी देते हैं। और भोजन की बात करें तो हमें काफ़ी हल्का भोजन करना है, जैसे दाल, हरी सब्जियां, सलाद, रोटी, हल्की खिचड़ी, ये काफ़ी बेहतर है। ये काफ़ी जल्दी इनका पाचन हो जाता है और हमें शरीर को काफ़ी दबाव नहीं सहना पड़ता। अब बात करते हैं उन चीज़ की जो हमें गर्मी में कम से कम खानी चाहिए, जैसे कि तला भुना खाना, समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज़, और या कोई भी ऐसा खाना जिसमें काफ़ी अत्यधिक तेल यूज़ हो रहा हो। इससे हमारे शरीर की गर्माहट बढ़ती है, इसको पचाने में हमें शरीर को मेहनत भी काफ़ी करना पड़ता है। मसालेदार भोजन, काफ़ी तीखा भोजन, यह हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देता है इस गर्मी में, एसिडिटी की समस्या भी काफ़ी होने लगती है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक या मीठा कुछ हम शरबत वरबत जो काफ़ी पीते हैं उससे हमारे शरीर को ठंडकता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पेय पदार्थों में काफ़ी ज़्यादा शक्कर, चीनी होती है, जिससे हमें काफ़ी सारा डिहाइड्रेशन होता है, यह हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। या कुछ लोग गर्मी में भी काफ़ी सारी चाय, कॉफ़ी पीते हैं, उन्हें आदत रहती है उस चीज़ की, अच्छा लगता है। लेकिन काफ़ी सारी चाय, कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इसलिए कभी अगर ज़्यादा चाय कॉफ़ी पिए तो पानी भी काफ़ी सारा पिए। या गर्मी में हम लंबे समय तक रखा हुआ जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना ख़राब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस भी काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं पानी कितना पिए हम। गर्मी में अक्सर लोग तभी पानी पीते हैं जब प्यास लगती है, ये सही नहीं है। गर्मी में हर एक अंतराल में आप पानी पिए, सबसे सही ये रहता है कि हम हर 1 से 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी या छाछ या नींबू पानी या आम का पन्ना कुछ ना कुछ इस तरह का हम लेते रहें। और ये कैसे पता लगेगा कि हम डिहाइड्रेटेड हैं नहीं हैं, तो पेशाब जब हमें एकदम साफ़ हो रही है, हल्के से पीले कलर की हो रही है, मतलब समझिए आप सही चल रहे हैं। लेकिन अगर कम पेशाब हो रही है या ज़्यादा डार्क कलर है, पीला, काफ़ी पीले पेशाब हो रही है, तो आप समझिए आप डिहाइड्रेटेड हैं। अब हम बात करते हैं गर्मी में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अब कपड़ों में बात करें तो हमारे यहाँ पहनावा अलग अलग, हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके का रहता है, सब जगह की वेशभूषाएं अलग हैं, सब अलग है। लेकिन एक जो हम सब पालन कर सकते हैं हिंदुस्तान में वो ये है कि हम हल्के रंग के कपड़े पहने। हल्का कलर मतलब सफ़ेद हो गया, क्रीम हो गया, हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी को हम पहन सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, इससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। फिर ये कपड़े कॉटन के हों तो सबसे अच्छी बात है। कॉटन के कपड़े जो हैं वो पसीने को सोखते हैं और हवा को शरीर तक पहुंचने भी देते हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा विकल्प है। जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं वो ढीले हों, बहुत ज़रूरी है कि वो कपड़े ढीले हों जिससे हवा का बहाव बना रहे, आपका तापमान इससे काफ़ी नियंत्रण में रहता है शरीर का। फिर बात करते हैं कि सिर का क्या करें, सिर को कैसे ढकें
ढकें कि नहीं ढकें।

0: तो मैं आपको जानकारी दूं कि शेरकुट गर्मी में ढकना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब भी घर से बाहर निकलें, टोपी पहन लें, कैप पहन लें या गमछा बांध लें, इससे ना हीट स्ट्रोक का ख़तरा काफ़ी कम रहता है। और टाइट कपड़े जितना हो सकता है अवॉइड करें, है ना। टाइट कपड़े पसीने को रोक देते हैं और इससे काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। या गहरे डार्क कलर के कपड़े आप मत पहने, काला कलर हो गया, लाल कलर हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया, ये आप ना पहने, है ना। इससे शरीर काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। और सिंथेटिक कपड़े इसे आप ना पहने, सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ना पहने गर्मी में। इससे काफ़ी बेचैनी बढ़ जाती है शरीर में, घमौरियों की समस्या बढ़ जाती है। अब मैं आपको बात करूँ, गर्मी की हम बात कर रहे हैं, तो कि अगर कभी किसी को काफ़ी अत्यधिक बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, काफ़ी ज़ोर से सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है, बेहोशी जैसा लग रहा है, तो ये जो 6-7 मैंने अभी सिम्टम्स बताए, ये हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो छाया में लेट जाए, ठंडा पानी पिए, शरीर के अपने पूरे शरीर के ऊपर उसके ऊपर ठंडा पानी छिड़का जाए, है ना, बर्फ़ उसको बर्फ़ के पानी में लेटाया जाए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसे लाइटली ना लें, हीट स्ट्रोक काफ़ी जानलेवा होता है। दोपहर की तेज़ धूप से बचना है, बाहर कम से कम निकलें, निकलें तो सर को ढक के निकलें। आप इस चीज़ को याद रखें कि गर्मी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लापरवाही इसे काफ़ी ख़तरनाक बना सकती है। आप अपने शरीर की सुनिए, पर्याप्त आराम कीजिए, हाइड्रेट रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा भोजन ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कहा भी गया है, विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलता है तो जीवन बदलता है। और हम सभी में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम बदल कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ आदतों की बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पर आप सभी से, क्योंकि अब वक्त आ गया है उन्हें बदलने का। सबसे पहली आदत होती है हर किसी में नकारात्मक सोचने की। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, हमारे साथ कुछ कम ज़्यादा हो, तो हम जो हमारी सोच है, सीधा हम नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। तो श्रोताओं, ये आपको बात हमेशा माननी होगी, स्वीकार करनी होगी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आपके जीवन में वो रोज़ आ सकते हैं, हफ्ते में 2 बार आ सकते हैं, या महीने में या साल में, क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इसीलिए जब भी हमारे मन में बुरे या नकारात्मक विचार आएं, अपनी सोच और मन स्थिति को बदलने का प्रयास आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां तो तुरंत नहीं बदल सकती, उन्हें बदलने में समय लग सकता है, लेकिन हाँ, सोच बदलने की शुरुआत हम आज से ही कर सकते हैं। और हमारी दूसरी आदत होती है हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। श्रोताओं, इस आदत को भी बदल दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको दूसरों को खुश करने से खुशी मिलती है तो ये बहुत अच्छी आदत है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप स्वयं को खुश रखना सीखिए, क्योंकि मानसिक शांति आपकी अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमारी सबसे खराब आदत होती है खुद को हमेशा कम समझने की। तो अगर आपकी सोच ये है, आप अपने आप को हमेशा दूसरों से कम आंकते हैं, तो इस विचार को भी तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसमें अनोखी क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और हमेशा मन में ये भाव रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और एक और आदत होती है हम सभी में हमेशा दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखने की, और यही उम्मीदें कई बार निराशा का सबसे बड़ा कारण बनती हैं और हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं। तो इसीलिए दूसरों से कम उम्मीद रखने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए ना, कि आपको अपने आप का बेहतर वर्जन या बेहतर संस्करण बनना है हर रोज़,

ये उम्मीद आप अपने आप से रखिए और अपने आप से की गई उम्मीद आपको कभी भी निराशा नहीं दे सकती। और सबसे खराब आदत होती है हम सभी इंसानों में, हम अतीत को छोड़ ही नहीं पाते, हम अभी भी वर्तमान के साथ साथ अतीत में जीते रहते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी का अतीत अच्छा ही हो, कभी कभी किसी का अतीत कई बार बहुत बुरे स्वप्न जैसा भी होता है। इसीलिए हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। और अतीत में जीने से सिर्फ और सिर्फ हमें दुख ही पहुंचेगा। अगर हमारा अतीत अच्छा है, उसकी कुछ यादें हमारे जेहन में हैं, तो उसे एक बुरे स्वप्न के जैसे भूल जाइए। और अगर हमारा अतीत अच्छा है तो उसे एक अच्छे स्वप्न के जैसा याद रखिए। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने का अवसर श्रोताओं सिर्फ और सिर्फ आज में ही छिपा होता है। तो ये बातें आप याद रखिए, क्योंकि हमारी जब आदतें बदलती हैं तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो हमें हमारी मंजिलें मिल ही जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल इस गीत के जैसे इस गीत को अपने जीवन में उतार लीजिए। घबराहटों को बाय बाय और मुस्कुराहटों को हाय हाय कीजिए। और साथियों, मैं एक बात यहाँ पर और बोलना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव सिर्फ एक ब्लड ग्रुप ही नहीं होता है, ये हमारे आपके हम सभी के सोचने का नज़रिया भी हो सकता है। और इसी के साथ ये सोच अगर हम अपना लें कि हमेशा हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है।

तो श्रोताओं, आइए आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को अपनाएंगे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत FMN पर। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज, फिल्म राज 3।

गीत और संगीत था राशिद खान का। जावेद अली को आपने सुना, फिल्म थी राज 3। श्रोताओ, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी, उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना, जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती, जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

आपके भरोसे फिल्म का गीत आपने सुना शान और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

जैस्मिन सेंडलास और सतेंद्र सरताज की ये आवाज़ें आपने सुनी। सतेंद्र सरताज और जैस्मिन का लिखा ये नगमा था, शाश्वत सचदेव का संगीत था, धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओं, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई ताकि खाद्य सुरक्षा के वैश्विक महत्व को उजागर किया जा सके। खेतों से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के बीज का की जो प्रक्रिया है वो बेहद सुरक्षित रहे, दूषित भोजन खाने से बचें जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इससे कुपोषण और गंभीर पेट की बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। असुरक्षित भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं। खाना पकाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, भोजन को उचित तापमान पर संरक्षित किया जाए। खाद्य सुरक्षा केवल हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ साथ भारत में जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए FSSAI जैसी संस्थाएं काम करती हैं। सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा

रखता है। बीमारियों से हम दूर रहें न सिर्फ स्वास्थ्य हमें जीवन प्रदान करता है, बल्कि एक कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी भी बहुत कुछ महफूज रहती है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहें।

0: बस थी साथी नीति मोहन को भी आपने सुना, रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक का संगीत था, हेट स्टोरी 3 फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

0: 7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें।
1: दिल का हाल सुने दिल वाला,

0: मौसम अगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

0: रहे।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री

के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से, और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: रात बदलते।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है, फोड़े की तरह। अगर ये ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिसमें दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: जी, जी, मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई। मिल गया, मिल गया, जालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

0: ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहां हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई। ये उस सिलसिले

0: हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म साथ हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जूहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जा करके सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने। उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
1: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवाय रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम तो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं काम बताओ मुझे, काम बताओ।
3: तो सोचना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: ये पास सच कह, ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो।
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो।
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये बम्बई है मेरे भाई बम्बई, बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक, निर्देशक, पटकथाकार, उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसन्न सेवा मुंबई के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख है दीपक शर्मा का।

0: वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंदसौर जिले में ये महीना विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों का साक्षी रहा। जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दी। जिले में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। बीते दिनों हुई इस लोक अदालत में न्यायालयों के 656 तथा प्री लिटिगेशन के 1048 सहित कुल 1704 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान रथ अभियान का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुदरी टोड़ा क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। देखें साफ करें ढके थीम पर आधारित इस अभियान में आमजनों को घरों में जमा पानी की नियमित जाँच और सफाई का संदेश दिया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में अब तक 417 खेत तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि 820 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन तालाबों से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर तथा किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सांसद निधि से निर्मित निक्षय वाहन को बीते दिनों जिले में रवाना किया गया। यह विशेष वाहन 905 गांव एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, जांच सुविधा उपलब्ध कराने तथा मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में आंगनवाड़ी केंद्र लालाखेड़ा में बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, एक्सरे, टीबी जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं रक्तचाप के परीक्षण किए गए तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में बीते दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 283 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 1428 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर वन में अधिकारियों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उद्यानिकी महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन गतिविधि आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 6,650 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण और लाभ भी प्रदान किया गया है। जिले में 39,000 से अधिक किसानों से 2.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान भी किया गया है, जिसका कुल भुगतान 600 करोड़ से अधिक रहा है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माहवारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिनों जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कार्यशाला एवं रैली के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गईं। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी एवं विशेषज्ञों के व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 220 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 149 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न निजी कंपनियों के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों को 15 लाख रुपए के चेक भी इस अवसर पर वितरित किए गए। जिला चिकित्सालय एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों से अब तक क्लब फुट से ग्रसित 34 बच्चों का सफल उपचार जिले में किया जा चुका है। वहीं मलेरिया निरोधक माह के तहत बीते दिनों मलेरिया जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन जिले में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को मलेरिया के लार्वा की पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई तथा बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जाँच कराने के निर्देश भी दिए गए। मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी, आलेख दीपक शर्मा का था और वाचन स्वर अभिषेक कटिहार का।
2: करकम जिले की चिट्ठी अभी आपने सुना, जिसे हमने आकाशवाणी के भोपाल

केंद्र से रिले किया। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। फोन पर श्रोता साथियों से बातचीत की है हमारे साथी मनोज सचदेव ने।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत के सफर में आज आपका हम सफर है, आपका दोस्त मनोज सचदेव। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस फोन कॉल से। हेलो नमस्ते,
1: उसमें से शेख सज्जाद राही बोल रहा था।
0: राही साहब कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ। 6 तारीख को हमारी शादी की 46वीं सालगिरह है।
0: बहुत बहुत मुबारकें, आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे।
1: कुमार पिक्चर का गीत सुनना चाहता
0: जी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 46वीं सालगिरह की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए। मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी की आवाज है सर।
0: जी जी जी जी, सुमन कल्याणपुरी जी, अभी कुछ दिनों पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, निधन हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं इस गीत के जरिए जो आपने पसंद किया है। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का, आपकी फरमाइश का ये नगमा।

0: कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत।
1: हाँ सर जी नमस्कार। सर जी
0: नमस्ते,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: जी पवन जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी, बहुत
0: बताएं
1: अच्छे हैं।
0: गंडई के बारे में बताएं, गंडई में अभी इस समय कैसा मौसम है?
1: अभी तो मौसम सर कभी बदली आ जाता है, कभी धूप निकल जाता है, कभी हल्का फुल्का बारिश भी हो जाता है।
0: जी जी
1: इस तरह से मौसम चल रहा है सर जी अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में।
0: जी और पवन जी आप क्या करते हैं?
1: मैं तो मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ सर अपने गंडई में।
0: जी
1: छोटा मोटा अपना मकान का काम ले लेता हूँ और उसी में अपना परिवार की पालन पोषण करते रहता हूँ
0: जी
1: सर
0: जी
1: जी।
0: चलिए अच्छी बात है, आप मकानों के निर्माण में लगे हुए हैं ठेकेदारी में।
1: जी
0: अच्छा,
1: जी
0: और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या शौक रखते हैं आप?
1: मैं तो सबसे बड़ा शौक मेरा तो सिर्फ एक ही है सर जी, मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ 1976,
0: बहुत
1: अपने
0: लंबे अरसे
1: पिताजी
0: से।
1: के जमाने से
0: जी जी
1: रेडियो सुनते आ रहा हूँ सर जी। और
0: जी
1: आज ऐसा हो गया कि देश विदेश कई जगह पर मेरा नाम रेडियो के माध्यम से जारी है सर जी।
0: चलिए पवन जी बहुत अच्छी बात है, आप मतलब पुराने जमाने की बात याद दिला रहे हैं, आप मतलब आपके पिताजी के समय से आप बता रहे हैं कि
1: जी
0: वो
1: सर
0: भी
1: जी
0: सुनते
1: सर
0: थे और आप भी सुनते आ रहे हैं, मतलब 50-52 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है आपको रेडियो सुनते हुए।
1: बिल्कुल सर जी, दस
0: जी जी
1: साल की उम्र से सुन रहा हूँ रेडियो
0: अच्छा
1: और मैं तो वैसे समीक्षा पत्र ही लिखता हूँ अधिकांश
0: चलिए
1: ज्यादा, और फरमाइशी तो सभी लोग भेज देते हैं सर फरमाइश करके, लेकिन समीक्षा करना बहुत बड़ी बात हो जाता है
0: बिल्कुल
1: सर।
0: बहुत जरूरी
1: लेकिन
0: है
1: आकाशवाणी से जुड़ने के बाद
0: जी,
1: धीरे धीरे ये कार्यक्रम को लिखते आ रहा हूँ सर जी।
0: बहुत अच्छी बात है, आपकी समीक्षाओं के माध्यम से ही हम अपने कार्यक्रमों को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपकी आपके पत्र जो हैं, आपके सुझाव जो हैं, हमें अच्छा लगता है कि आप इस तरह के कार्यक्रम में हमें सुझाव देते हैं और समीक्षा करते हैं हमारे
1: जी
0: कार्यक्रमों की। कौन से कार्यक्रम आपको
1: जी
0: अच्छे लगते
1: सर,
0: हैं पवन जी?
1: आपके यहाँ से सर अभी फिलहाल फोन इन कार्यक्रम ही ज्यादा सुन पाता हूँ हर
0: जी
1: रविवार को,
0: जी जी जी
1: और जुड़ने का प्रयास करूंगा सर जी। क्या है और भी कई आकाशवाणी वहां भी जुड़ा
0: चलिए
1: हूँ, लेकिन आपके यहाँ से मेरे को भाई ध्रुवाराम साहू जी ने जोड़ा है
0: जी बहुत अच्छी
1: और
0: बात है
1: उसको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि बालाघाट से मुझे जोड़ने के लिए।
0: पवन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। कौन सा गाना सुनना
1: जी
0: चाहते
1: जी
0: हैं आप?
1: आंखें फिल्म का गीत है सर, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: तो लीजिए सुनिए आपके रेडियो सेट पर आप और आपके दोस्तों के लिए आपकी पसंद का ये नगमा।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत से हम बात कर रहे हैं।
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति।
0: बालोतरा राजस्थान से
1: जी
0: मोहनलाल जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी दूर से हमें आज याद किया।
1: बिल्कुल जी।
0: मोहनलाल जी, आपके बारे में बताएं।
1: हाँ, राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर ध्यान
1: और
0: रखें आप।
1: बिल्कुल, और तूफानी बारिश तो परसों भी हुई थी।
0: जी, मोहनलाल जी क्या करते हैं आप वहाँ पे बालोतरा में?
1: हाँ, मैं किराना की रेड़ी लगाता हूँ।
0: जी, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप?
1: ये 25 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ।
0: जी, और कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मतलब पत्नी बाला देवी,
0: जी,
1: दो बच्चिया उषा देवी और दरिया और माणक।
0: जी, चलिए, एक साथ आप परिवार में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में रहते हैं। और बताएं, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, रफी साहब की आवाज है।
0: जी
1: फिल्म का नाम है आप तो इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल, आप ऐसे न थे, फिल्म का नाम।
0: जी तो लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो,
1: मैं कोतवा सागर छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा।
0: राम स्वरूप जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भी आप लोग आगे भी लोग आगे बहन लोग बालाघाट से।
0: जी, और क्या करते हैं, आपके बारे में कुछ बताएं।
1: मैं किसी यात्रा कम करते हुए सवारी करते करते किसी यात्रा घुमाने के लिए ले जाता हूँ।
0: जी
1: अभी बद्रीनाथ वापसी आ रहा हूँ, अपने रतनपुर की नहीं अभी
0: जी
1: यहाँ से
0: जी
1: घर निकलूंगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यात्राएं काफी करते रहते हैं, कोई ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में कुछ अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी यात्रा में कोई ऐसी घटना जो आप हमें बताना चाहते हैं।
1: भैया जी घटना क्या थोड़ा बहुत तकलीफ तो मिलते ही रहते तीर्थ यात्रा में,
0: जी,
1: बाकी सभी ऐसे मनमोहक के दर्शन। अभी बद्रीनाथ से आया हूँ, बर्फीला क्षेत्र है,
0: जी
1: ठंडा भी रहा बद्रीनाथ में,
0: जी
1: केदारनाथ भी चौगुना भीड़ था, सभी जगह चौगुना में था, यमुनोत्री ठंडा पानी था, बढ़िया बर्फीला पानी वहाँ स्नान करता है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अपना यमुनोत्री में अपना गर्म पानी कुंड है वहाँ है,
0: जी
1: गंगोत्री ठंडा पानी है,
0: जी जी
1: मनोकामना देवी।

0: थे अपना गिफ्ट के बाद वहाँ भी अच्छा
1: जी
0: दर्शन माता रानी का।
1: जी आप यानी तीर्थ स्थलों की यात्राएं ज्यादा करते रहते हैं ऐसा लग रहा है, और बहुत अच्छी बात है, आप ईश्वर के। जी जी बहुत अच्छी बात है। आप बताएं आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आज इसमें रामपुरी गंगा मिल स्नान भी है उसमें पहाड़ों का।
1: जी यानी आप अभी पहाड़ी एरिया से होकर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको याद आ
0: हाँ
1: रही है हुस्न पहाड़ों का,
0: भैया
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: परम
1: हेलो।
0: आदि महोदय, सादर नमस्कार। मानव आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा का वार्तालाप कर रहा हूँ। मानव आप कैसे हैं?
1: बहुत ही बढ़िया, दिल से याद किया है। और आज मथुरा नगरी में आप, मथुरा नगरी कृष्ण श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली में आप रहते हैं।
0: प्राप्त हुआ है
1: जी
0: कि एक महीने में एक बार ही फोन लगाए, तो मैं इसलिए एक महीने में एक बार ही फोन लगाता हूँ और काफी दिनों के पश्चात आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ
1: जी। जी, ये निवेदन हमने आपके जैसे सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लिया है। और हमने आपसे गुजारिश की है, एक निवेदन किया है कि जैसे आपके साथ ऐसे तमाम हमारे श्रोता हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें भी मौका मिले, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप महीने या दो महीने में एक बार हमसे बात करें। अब हर हफ्ते अगर आप हमसे बात करते हैं तो कुछ ऐसे नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ नहीं पाते, इसीलिए हमने निवेदन किया। और आप तो समझदार हैं, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं।
0: मैं आपकी बातों से सहमत हूं और नए नए श्रोताओं को भी अवसर मिलना चाहिए
1: जी,
0: और उनकी भी पसंद के फरमाइश गीत हमें सुनना चाहिए, उनके विचार और भावनाओं को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए
1: जी,
0: और इस तरह से हम एक दूसरे से श्रोता दर श्रोता जुड़ते चले जाएंगे।
1: अपने आप लिखते हैं, आप कविता भी करते हैं और नियमित कार्यक्रमों को सुनते हैं। आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है नरसिंहा
1: जी,
0: तुम हमसे दोस्ती कर लो, ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ बालाघाट आकाशवाणी से प्रसारण हेतु।
1: जी बिल्कुल, लीजिए आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: आकाशवाणी बालाघाट।
1: जी आकाशवाणी बालाघाट से कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत।
0: जी आप... जी सर, सर जी नमस्कार।
1: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
0: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ। अदल
1: रमेश साहू जी?
0: जी सर।
1: साहू जी कैसे हैं आप?
0: जी सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ आदरणीय
1: जी।
0: और आप सबों के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी आरजे उद्घोषक भाई बहन बढ़िया मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, भगवान आप सबों को स्वस्थ रखे।
1: सब आप सभी लोगों की जो है आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का सहयोग है तभी हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। और ये बताएं कि आपने हमें आज कॉल किया है, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, आपके बारे में कुछ बताएं।
0: जी सर मैं क्या है सर, एक किसान हूँ
1: जी
0: और खेती बाड़ी करता हूँ आदरणीय, और अभी नीम के पेड़ में बैठ करके आपको टेलीफोन लगाया आकाशवाणी बालाघाट
1: जी।
0: और कैसा? इस समय क्या है आदरणीय, मक्का की खेती है और धान की कटाई और मक्का की कटाई दोनों साथ ही चल रही।
1: जी जी कैसी फसल रही इस बार आपकी मक्के की?
0: मक्के की फसल में तो क्या है आदरणीय, फसल तो अच्छी रही लेकिन क्या है वो बंदर जो है ना आदरणीय बहुत परेशान कर रखा था
1: जी। अब ये देखिए कि
0: क्या है कि अब किसानों से सभी जीव जंतु निर्भर रहता है आदरणीय।
1: जी बिल्कुल। और ये बताएं कि आपने धान भी लगाई है, कौन सी किस्म की धान लगाई है अपने खेत में?
0: जी आदरणीय धान तो मेरा हाइब्रिड किस्म का धान है आदरणीय।
1: जी तो ये धान आप मिल वालों को देते हैं, सरकार को देते हैं कि किन्हें देते हैं अपनी धान आप?
0: ये धान आदरणीय मैं इस समय का क्या सरकार तो लेती नहीं है, बरसाती धान को सरकार खरीदती है।
1: हाँ, गर्मी की धान नहीं लेती आपका कहना है?
0: अब गर्मी की धान को मिलर्स को दे देता हूँ आदरणीय।
1: जी जी जी तो आपकी फसल आ चुकी है?
0: जी सर फसल आ चुकी है आदरणीय।
1: चलिए अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा साहू जी आपसे बात करके। और आप हमारे संगीत के फैन हैं आकाशवाणी बालाघाट और सभी आकाशवाणी के केंद्रों को सुनते हैं, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, ये बात सुनकर बहुत अधिक खुशी हुई आपसे बात करने में। आज आप कौन
0: सा? आप कौन साहब बोल रहे हैं? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर मीठी प्यारी और एकदम मनमोहक आवाज है जी।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी बालाघाट से मनोज सचदेव।
0: मनोज

0: सत्य मनोज सचदेव बोल रहे हैं ना?
1: जी जी महोदय।
0: सर जी आपके लिए एक दो लाइन की पंक्ति थी, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
1: जी बिल्कुल
0: जी। जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखन नदियों की तरह कलकल कलकल करके बहती रहे। और आकाशवाणी बालाघाट से आपके फोन, आपके गीत कार्यक्रम में आदरणीय मनोज सचदेव की आवाज स्वर लहरी की स्वर धारा में बहती रहे।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और आकाशवाणी बालाघाट का यह सफर का कारवा हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे। आदर,
1: बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें कविता के माध्यम से कही। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप आज कौन
0: सा ऐसा है आदरणीय की बेटी बेटे फिल्म का गीत है आदरणीय
1: जी,
0: और गीत के बोल है बात इतनी सी कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफान।
1: लीजिए सुनिए आपका और आपके दोस्तों की पसंद का ये नगमा आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो,
1: हेलो जी,
0: कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत में आपका बहुत
1: मेरा
0: बहुत
1: नाम ग्रेसी
0: स्वागत।
1: सचदेव है और
0: ग्रेसी जी
1: मैं एक छात्र हूँ कक्षा 11वीं की।
0: कहाँ रहती हैं ग्रेसी जी आप?
1: हम बागहाट में रहते हैं जी।
0: चलिए बहुत अच्छा है आपने हमें कॉल किया। आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें और बताएं आपकी हॉबीज के बारे में बताएं कुछ ग्रेसी
1: हमारे घर वाले को पुराने गाने का बहुत शौक है, पुराने
0: जी।
1: गाने गाते भी हैं हम और हम
0: जी
1: बजाते भी हैं,
0: बहुत।
1: गिटार बजाते हैं हम।
0: अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं जैसे स्कूल की छुट्टी लगी हुई है तो?
1: इतने दिनों में हमारी छुट्टी लगी है तो हम गिटार बजाते हैं और
0: जी
1: अपने पसंद की जो भी चीजें हैं जो हमें करना पसंद है वो हम करते हैं
0: बहुत
1: और साथ ही
0: अच्छा,
1: साथ पढ़ाई भी करते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ग्रेसी। आप ये गतिविधियों में लगे हुए हैं और गिटार बजा रहे हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज हम जाने जा ढूंढता फिर रहा किशोर कुमार का सुनना चाहते हैं।
0: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: आकाशवाणी बालाघाट से कार्यक्रम
1: हाँ
0: आपके
1: जी,
0: फोन
1: हाँ
0: आपके गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: नमस्ते भैया, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ चंद्रकांत नागा सिंह।
0: जी। चंद्रकांत जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: यही गोंदिया से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं चंद्रकांत जी आप?
1: बस जी, बढ़िया बढ़िया।
0: और आपके बारे में बताएं चंद्रकांत जी।
1: मैं स्वास्थ्य सेवा में हूँ, आयुष्मान ऑफिस में।
0: जी, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, आप स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं
1: हाँ
0: और
1: आपका नियमित कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम हमारे सुनते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: हाँ, ये सुबह से सुनते हैं, ये गुड मॉर्निंग बालाघाट,
0: जी, सुबह
1: पूरा
0: नमस्कार
1: ज्ञानवर्धक
0: बालाघाट।
1: है वो।
0: जी जी
1: नमस्कार
0: जी
1: बालाघाट,
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शाम को होता है हमारा गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग।
0: जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अभी देखो, हम खेती बाड़ी से भी जुड़े हैं,
0: जी हाँ
1: अभी अपना रबी की पूरी कटाई वगैरह हो चुकी है,
0: जी,
1: बस अभी सभी को बारिश का इंतजार है।
0: जी हाँ
1: तो बारिश के इंतजार के लिए गाना है लगान फिल्म का, काले मेघा काले मेघा।
0: जी, तो जरूर ये गाना सुनकर हम समझते हैं, जब आप गाना सुन रहे होंगे तो बारिश की फुहारों से ये गीत से आपका स्वागत ये
1: हाँ
0: गीत
1: जी, धन्यवाद।
0: करेगा, हम ऐसी कामना करते हैं। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत के सफर में आज मैं था आपका दोस्त मनोज सचदेव। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप येड़े जी और राकेश वर्मा जी ने, और प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।

अभी श्रोता साथी सुन रहे थे फोन कॉल्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। श्रोताओं से फोन पर बातचीत की थी हमारे साथी मनोज सचदेवा ने। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई

0: को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पात्रिकर। इस विविधरंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष यादव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमय शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है।
3: लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया ना कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं।

0: हिंदी उर्दू मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईशा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माय अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहाँ बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियाँ करने वाली हैं, तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमार प्रणाम स्वीकार करें। अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल गई है आज। ने याद किया है अपने लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गढ़ने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यहाँ भोग में सुरस्वती कहीं लगा, तब सुनावत है आप सबके
1: सुरस्वती मैया की जय।
2: हाँ

0: आभारी हूँ विविध भारती की।
1: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
0: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
1: तो उस पर कुछ गा रही?
0: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: क्या सुंदर अंदाज में आपने पेश किया। तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है। इस
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है। क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनका घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माएँ कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। हाँ, तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बईये इन्हीं बतावा, यहाँ देखत है सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा, तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुईठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश

0: की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
1: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिल्कुल
1: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सही

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले ही इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खास तौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला से छी, मैथिली भाषा है। सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले, हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रण झुंझार शिशाई, अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है। इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा।

0: तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब।
1: वाह वाह।
0: तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे, हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना, झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है, भगवती की आराधना की जाती है, भगवती के भाई हैं भैरव ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है। तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, ए जटिन।

जट्टा को आवाज सुनाई थी, उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आयब गेलियोगे जट्टिन, आयब गेलियो। और जट्टा

आ गया, जतिन हिमाय कैसे आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जतिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारो नाम का है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनों को, नरमदे हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ये है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छी जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा, तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू.
1: वाह वाह क्या बात है.
0: धन्यवाद
1: नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं. अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया. और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में. बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर. आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है. लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है. भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं. तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं. ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. हमने सुना है कि उत्तराखंड, जहाँ की आप रहने वाली हैं, वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है. तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं. महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं, और बड़ी निडर होती हैं. तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में. बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के? जो
2: नहीं, वहाँ की महिलाएँ जो होती हैं बहुत निडर महिलाएँ होती हैं, शक्तिशाली होती हैं. कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं. नमस्कार, प्रणाम. पहलाद, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ. मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है. ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है. एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है.
1: तो वो गा के सुनाइए.

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पर सारे दर्शक खड़े होकर नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवा निहारो कनिया, पनवा के सबर सले लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया।

0: कन्हैया उड़ उड़ बैठी बजा जिया तो कन्हैया है उड़नी के सब बरस ले जड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब बरस ले ली और पिंजड़े वाली मुनिया।
1: थैंक यू विविध भारती,
2: धन्यवाद।
1: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया, मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
3: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
2: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवाय शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले, और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
0: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने

0: पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बना

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

प्रिय श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यास से पढ़िएगा। प्यास से पढ़ा ना आपने? मुझे

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफर लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफर की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भांति का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है। भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। बाग की हर कली खिलने लगती है। तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भांति का प्यार पुकारे। क्या बात है।

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूं मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संग

कमर सा चेहरा तेरा पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी छुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही है कि प्यार की गली बहुत सकरी होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं, उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को, बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है, तभी तो पानी के बिना प्यार

की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी। बिल्कुल सही, जो कब आएगा कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतज़ार। श्रोताओं आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहाँ प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने

हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफर का कार्यक्रम हम सफर बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज भी नहीं रह गई। वो रह गुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है? जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूं मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाजों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब यही अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज़्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के ज़माने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को, चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री है यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं। तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एस डी बर्मन का संगीत। हीर रांझा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: खाया।
1: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहां तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है, खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं। ढेर सारे व्यंजन
1: बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्रीय सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 दमकलें और 3 वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच चुका है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीन शेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनटीबीसी विंध्याचल ने जेम 2026 की प्रतिभागी बालिकाओं के लिए विशेष साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 150 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। बजकर 15 मिनट होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा

0: चीफ जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष ₹300 की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से ₹642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत ₹942 है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर ₹29 की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹942 हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से

0: होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय

0: और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। सहल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहन नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा। सोनिक ओमी का संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याणजी आनंद जी का संगीत।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा रमेश चंद्र वर्मा निर्मला वर्मा अनुज आयुषी अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत समीर के बोल धुन बनाई है नदीम श्रवण ने

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका,

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज, आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का, और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिया का नाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। लो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूं।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई
3: है?
2: नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाब कादिर की जाबख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: हद तेरे की, हार हो गई? जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लछवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी बिल्कुल।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप, मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान की तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
3: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
6: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
7: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
6: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
7: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
6: उफ दादी जान,
7: हम बराबर देख रहे हैं।

तिरंग तैयार किया जाए ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं,
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशेष कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी का सफरनामा कार्यक्रम। संकलन और वाचन स्वर विनय श्रीवास्तव का, प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और ये जो वर्ष है 2026 हम मना रहे हैं आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष उत्सव। और इस उत्सव में हम शामिल कर रहे हैं उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को जो आकाशवाणी आप तक पहुंचती है, किस तरह से ये पहुंचती है और किन किन पड़ावों से पार होते हुए ये आकाशवाणी आज आपके साथ है, आपके पास है। तो चलिए सिलसिलेवार आकाशवाणी का ये सफरनामा हम शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1936

हिताय, बहुजन सुखाय और सूचना शिक्षा और मनोरंजन। तो चलिए मनोरंजन के पहलू को छूते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, और इसके बाद आकाशवाणी के सफरनामे को हम जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ।

सीधा प्रसारण किया गया। ये एक अनोखा और बहुत ही रोचक पहलू था आकाशवाणी का, जब इस स्वतंत्रता प्रदान करने संबंधी समारोह का सीधा प्रसारण सारे देशवासियों ने आकाशवाणी के जरिए, रेडियो के जरिए सुना। इस सफरनामे में आगे बढ़ते चले गए और 12 नवंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रसारण भवन दिल्ली केंद्र से एकमात्र उनका प्रसारण किया गया। और श्रोताओं, हम बता दें कि 12 नवंबर 1947 का वो दिन, वो तारीख अजर अमर हो गई, क्योंकि इसी तारीख को हम लोक प्रसारक दिवस भी मनाने लगे। यानी 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी प्रसारण भवन के दिल्ली केंद्र आए और उन्होंने अपना प्रसारण किया, तो वो तारीख एकमात्र जो थी, वो रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है हमारी आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज़ में और लाइब्रेरी में। और इसी के चलते 12 नवंबर 1947 जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना प्रसारण किया और उनके इस एकमात्र प्रसारण से सारे देशवासियों ने उनकी बातें सुनी और 12 नवंबर का जो दिन तय किया गया वो लोक प्रसारक सेवा दिवस के रूप में हम आज भी मनाते हैं। आकाशवाणी के इस सफरनामे में श्रोताओं, हम लगातार आगे बढ़ते चले गए, धीरे धीरे आगे विकास होता चला गया और तकनीक के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चले गए, हमने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 15 सितंबर 1948 में केंद्रीय समाचार संगठन को समाचार सेवा प्रभाग एवं विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग में विभाजित कर दिया गया ताकि कार्य कुशलता और अधिक बढ़ जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे और हम जिस ध्येय वाक्य को लेकर चले थे, सूचना शिक्षा और मनोरंजन, उसी ध्येय वाक्य के मद्देनजर अक्टूबर 1950 में आकाशवाणी वाद्य वृंद का गठन किया गया और 20 जुलाई 1952 में संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का पहला प्रसारण आरंभ हुआ। श्रोताओं, ये वो दिन था आकाशवाणी के इतिहास में 20 जुलाई 1952 जब संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारण किया गया और इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के जरिए संगीत की उभरती प्रतिभाओं को एक सुनहरा मंच आकाशवाणी ने प्रदान किया। इसके जरिए शास्त्रीय संगीत की उन उभरती प्रतिभाओं को मौका मिला आकाशवाणी के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का, जो संगीत के जगत में आगे चलकर अपना नाम उन्होंने रोशन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 29 अप्रैल 1953 में वार्ताओं और परिचर्चाओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम का अंग्रेजी में प्रसारण आरंभ हुआ। हम एक भाषा तक सीमित नहीं रहे बल्कि हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा पश्तो, फारसी और अन्य विदेशी भाषाओं में भी अपने प्रसारण को आज कर रहे हैं। श्रोताओं, 90 वर्षों का ये क्रम आकाशवाणी का सूचना शिक्षा और मनोरंजन के ध्येय वाक्यों को लेकर चलता रहा और इस क्रम में हमारे सहभागी रहे हमारे श्रोता। उन श्रोताओं के दम पर ही हम आज इस डिजिटल युग में अपनी प्रामाणिकता, अपनी विशेषता कायम रख पाए हैं। बात की जाए इस सफरनामे में पिछले मील के पत्थरों की, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम 23 अक्टूबर 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन का आयोजन आकाशवाणी द्वारा किया गया और इसके बाद 14 अगस्त 1955 में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आरंभ किया गया, जो लगातार आज भी जारी है। सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान के चलते ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान समय समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, जो लोगों के ज्ञान और सूचना में मददगार साबित होते हैं। आगे बढ़े आकाशवाणी के सफरनामे में 8 दिसंबर 1955 में रेडियो न्यूज रील का प्रसारण आरंभ किया गया। श्रोताओं, 25 जनवरी 1956 में पहला अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि हमने हर वर्ग के श्रोता का ध्यान रखा, ऐसे में हमारे जो कवि हैं, जो कविताएं लिखते हैं, साहित्य की काव्य विधा में पारंगत हैं, उन्हें भी एक मौका दिया गया और संगीत के अखिल

श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों की ये यात्रा बहुत आसान भी नहीं थी। 3 जून 1947 में एक ऐसा मील का पत्थर आकाशवाणी के इतिहास में अमर हो गया जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, M.A. जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार बलदेव सिंह द्वारा भारत के विभाजन के संबंध में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारण किया गया। तारीख अमर हो गई 3 जून 1947। इसके बाद 14 और 15 अगस्त 1947 में संसद के केंद्रीय कक्ष से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने संबंधी समारोह का

भारतीय कार्यक्रम के बाद शास्त्रीय संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के बाद हमने शुरू किया अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन। तारीख थी 25 जनवरी 1956। और जब सूचना शिक्षा मनोरंजन की बात होती है और श्रोताओं को साथ लेकर चलने की बात होती है श्रोताओं, तो हम हर वर्ग के श्रोताओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इसी के चलते हमने साहित्य जगत के उन श्रोताओं को भी अपने दिल में जगह दी, अपना एक मंच दिया और 29 अप्रैल 1956 में पहला आकाशवाणी साहित्य समारोह आकाशवाणी में आयोजित किया गया। साहित्य संगीत के साथ साथ हम थिएटर आर्टिस्ट को भी इस आकाशवाणी के जरिए हमने मौका दिया। और आकाशवाणी की इस 90 वर्षों की यात्रा में नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ हुआ 14 जुलाई 1956 में। 14 जुलाई 1956 से लगातार नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है श्रोताओं। और इसके जरिए हम उन कलाकारों को, उभरते कलाकारों को मौका देते हैं आकाशवाणी में अपनी प्रतिभा दिखाने का, जो रंगमंच से जुड़े हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं, रंगमंच में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं। इसके चलते नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ हुआ आकाशवाणी से 14 जुलाई 1956 में। इसके साथ ही एक और लोकप्रिय कार्यक्रम 15 अगस्त 1956 में हमने आरंभ किया, रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन दोनों ही कार्यक्रमों के जरिए, नाटक के जरिए हमने रंगमंच के कलाकारों को एक मंच दिया ताकि वे अपनी प्रतिभा पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा ऑडियो माध्यम के जरिए, श्रवण माध्यम के जरिए अपनी प्रतिभा लोगों तक पहुंच सके। और रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के जरिए हमने उन पहलुओं को छुआ जिसमें किसी विषय विशेष पर हमने रूपक प्रसारित किया और उसके जरिए उस जगह विशेष की बातें इस कार्यक्रम में शामिल की गईं। तारीख थी 15 अगस्त 1956 जब रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित हुआ। आकाशवाणी का ये सफरनामा 90 वर्षों का श्रोताओं लंबा जरूर है लेकिन रोचक और दिलचस्प है। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं एक गीत और गीत के बाद आकाशवाणी का ये सफरनामा जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा, आकाशवाणी का सफरनामा।

0: निमय एकांश की स्थापना आकाशवाणी में की गई। 3 अक्टूबर 1957 की तारीख ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। ये तारीख अजर अमर हो गई, जो आज भी लोग हमें जानते हैं आकाशवाणी के नाम से। तारीख थी 3 अक्टूबर 1957, जब ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। अब जो उद्घोषणाएं आप सुनते हैं वो इस तरह से होती हैं, ये आकाशवाणी है, या ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। तो अब सारे भारत के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं वो ऑल इंडिया रेडियो की जगह आकाशवाणी नाम से जाने जाते हैं। आकाशवाणी का ये सफ़रनामा श्रोताओं 90 वर्षों का बहुत ही रोचक है, जो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 1957 की तारीख हिंदी भाषा के पाठों का प्रसारण हमने शुरू किया और उन श्रोताओं तक पहुँचे जो हिंदी ठीक से नहीं समझ पाते थे। तो हमने हर वर्ग के श्रोताओं को अपना बनाया और इसके चलते हम आज सारे भारत में सुने जाते हैं और समझे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ भारत के बाहर भी हमें लोग सुनना पसंद करते हैं। आकाशवाणी का ये सफ़रनामा लगातार जारी है। श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ, हम सूचना शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन आपका करते चलेंगे, और इस सफ़रनामे में गीत संगीत के साथ साथ उन सारे मील के पत्थरों का जिक्र इस कार्यक्रम में करेंगे जो आप तक पहुंचने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल सुनते हैं एक गीत।
1: निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा।

26 मई 1957 में पहला सुगम संगीत समारोह आयोजन किया गया। तो देखिए श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत, साहित्य, रूपक, नाटक के बाद हमने लाइट म्यूजिक, सुगम संगीत के कलाकारों को भी मौका दिया और पहला सुगम संगीत समारोह का आयोजन 26 मई 1957 से प्रसारित किया, जो अनवरत जारी है। आकाशवाणी के सफरनामे में 90 वर्ष की इस यात्रा में 7 जुलाई 1957 का दिन भी महत्वपूर्ण है, जब कार्यक्रम

0: मस्ताना।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये क्रम लगातार जारी है और हम इसमें जिक्र कर रहे हैं उन तारीखों का, उन मील के पत्थरों का, जिसके चलते चलते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 22 फरवरी 1960 में दिल्ली केंद्र से उर्दू मजलिस कार्यक्रम का आरंभ हुआ। जैसा कि हमने चर्चा के दौरान गीत के पहले आपको बताया था कि हम हर भाषाओं में लोगों तक पहुँच रहे हैं और यही हमारी विशेषता है। इसी के चलते 22 फरवरी 1960 में दिल्ली केंद्र से उर्दू मजलिस कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ हुआ। 14 फरवरी 1961 की तारीख मील का पत्थर तब बन गई श्रोताओं जब संसद की कार्यवाही की दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा का प्रसारण हमने आम श्रोताओं तक प्रारंभ किया। इसके चलते संसद में क्या हो रहा है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं, इन सारी चीज़ों का सीधा प्रसारण साप्ताहिक समीक्षा के जरिए, संसद की कार्यवाही की समीक्षा के जरिए हम 14 फरवरी 1961 से इसका लगातार प्रसारण अब तक करते आ रहे हैं। ये मील का पत्थर हमारे उन श्रोताओं के लिए लाभदायी साबित हुआ जो राजनीति में रुचि रखते हैं और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि हमारे जो जनता के नुमाइंदे हैं वो किस तरह से हमारी बातें संसद में रखते हैं। अगस्त 1963 में वार्ताओं के हिंदी में वार्ताएं और परिचर्चाओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण हमने आरंभ किया। इसके जरिए ज्वलंत विषयों पर हम श्रोताओं के बीच पहुंचे और वार्ताओं और परिचर्चाओं के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर हमने उन विषयों को जनता के बीच रखा और विषय विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में बुलाकर उनकी राय जाननी चाही। श्रोताओं, इस 90 वर्षों का जो सफ़र है, हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि बहुत रोचक और दिलचस्प है। हम यूं ही जनता के दिलों तक नहीं पहुंचे, इसका एक लंबा सफ़रनामा है, एक लंबा इतिहास है जो हम आपके साथ आज इस विशेष कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं। हमने हर वर्ग को छूना चाहा और उसमें सफलता भी पाई। इसी के चलते 5 जून 1965 की तारीख में केंद्रीकृत साप्ताहिक खेल कार्यक्रमों का प्रसारण हमने आकाशवाणी से प्रारंभ किया।
2: जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: 24 अक्टूबर 1965 की तारीख वो मील का पत्थर साबित हुई आकाशवाणी के सफरनामे में श्रोताओं, जब विदेश सेवा से 30 मिनट की अवधि का उर्दू सर्विस का कार्यक्रम हमने आरंभ किया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सभी भाषाओं को साथ लेकर चले और 23 नवंबर 1965 में संस्कृत पाठ का प्रसारण हमने आरंभ किया। और श्रोताओं, जो हमारे श्रोता नियमित हैं वो जानते हैं कि हमारे केंद्र से भी और अन्य केंद्रों से भी समय समय पर संस्कृत भाषा के समाचार बुलेटिन, हिंदी भाषा के समाचार बुलेटिन, उर्दू भाषा के समाचार बुलेटिन और अंग्रेजी भाषा के समाचार बुलेटिन आपको लगातार सुनने मिलते हैं। इस सफरनामे में 1 नवंबर 1967 की तारीख फिर अमर हो गई जब हमने आकाशवाणी से विज्ञापन सेवाएं आरंभ की। और अब श्रोताओं, आप अपने व्यापार का प्रचार प्रसार हमारे आकाशवाणी केंद्र से कर सकते हैं, जिसके जरिए आपके व्यापार की आवाज हम दूर तक पहुंचाते हैं। तारीख 1 नवंबर 1967 जब आकाशवाणी से विज्ञापन सेवाएं प्रारंभ हुई। इसके जरिए हम उन श्रोताओं तक भी पहुंचे जो छोटे व्यापारी हैं, मंझले व्यापारी हैं, उनके व्यापार को एक नई गति, एक नई ऊंचाई तक हमने पहुंचाया और हमारा वाक्य बन गया, शुभ वाणी, लाभ वाणी, जनजन की वाणी, आकाशवाणी। आप भी अपने विज्ञापन का प्रचार प्रसार हमारे आकाशवाणी केंद्र से कर सकते हैं। अब श्रोताओं, इस सफरनामे में हम लगातार

के नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ते चले गए। 21 जुलाई 1969 में दिल्ली केंद्र से अलग चैनल पर युववाणी सेवा प्रारंभ की गई। ये सेवा प्रारंभ होते ही हम युवा श्रोताओं के दिलों तक अपनी जगह बना चुके थे और श्रोताओं अब हर केंद्र से युववाणी कार्यक्रम प्रसारित होता है। हमारे केंद्र से भी आप इसे सुनते हैं शाम 5 बजे से।

आकाशवाणी का ये सफरनामा लगातार जारी है श्रोताओं, और 90 वर्षों का जो इतिहास क्रम है उसे इस छोटे से कार्यक्रम में समेटना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो फिर डर किस बात का है। चलिए इस सफर को लगातार जारी रखते हैं, लेकिन ये सफर थोड़ा सा संगीतमय बनाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक गीत। गीत के बाद फिर आकाशवाणी का ये सफरनामा 90 वर्षों का हम आपके साथ साझा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ।

गीत के बाद श्रोताओं एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। 22 सितंबर 1969 में धीमी गति का समाचार बुलेटिन आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। धीमी गति के समाचार बुलेटिन का सबसे ज्यादा उपयोग हमारे उन श्रोताओं के लिए लाभदायी साबित हुआ जो शॉर्ट हैंड की परीक्षा देते हैं, और उनके लिए इस धीमी गति के समाचार बुलेटिन का महत्व बहुत ज्यादा है। सितंबर 1969 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान आरंभ किया गया। श्रोताओं, इस सफरनामे में जो आज भी लगातार जारी है, हमने आपसे चर्चा के दौरान कहा था कि हम सभी भाषाओं में लगातार प्रसारण कर रहे हैं।

0: और इसी के चलते 8 नवंबर 1971 में विदेश प्रसारण सेवा से सिंधी भाषा में कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए गए। इसके जरिए हम उन श्रोताओं तक भी पहुंचे जो अहिंदी भाषी हैं और सिंधी भाषा ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ये सिलसिला यूं ही आगे चलता रहा और 19 नवंबर 1972 में दैनिक खेल सेवा का प्रसारण किया गया। हम हर भाषाओं तक पहुंचने की कोशिश लगातार करते रहे। आकाशवाणी के सफरनामे में 30 जून 1974 में संस्कृत भाषा में पहला समाचार बुलेटिन आरंभ हुआ। एक समय था श्रोताओं जब आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ही थे, लेकिन 1 अप्रैल 1976 में आकाशवाणी से दूरदर्शन को अलग कर दिया गया। श्रोताओं, ये सफरनामा लगातार जारी रहा और हम हर वर्ष कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश में लगे रहे और इसी के चलते 1977 का जो वर्ष था वो वर्ष मील का पत्थर साबित हुआ, महत्वपूर्ण साबित हुआ आकाशवाणी के सफरनामे में, जब आकाशवाणी से राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण आरंभ हुआ। इसके चलते हम हर उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तक अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का एक मौका हमने उन लोगों को दिया ताकि आकाशवाणी से राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रसारण कर सकें और 1977 से लगातार ये सिलसिला जारी है। श्रोताओं, इस सफरनामे में 28 मई 1984 की तारीख महत्वपूर्ण तारीख साबित हुई जब खाड़ी क्षेत्र के लिए विदेश प्रसारण सेवा आरंभ हुई और हमारा जो नेटवर्क है भारत से बाहर निकलकर खाड़ी के देशों तक पहुंचा और हमारी आवाज खाड़ी के देशों तक अब सुनी जाती है।
1: कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा।
0: 15 अगस्त 1985 की तारीख में फिर एक महत्वपूर्ण पहलू, एक पड़ाव आया आकाशवाणी के सफरनामे में जब प्रत्येक घंटे समाचारों का प्रसारण आरंभ किया गया जो लगातार आज भी जारी है। आज श्रोताओं, हर घंटे हमारे समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं और इन्हें आप सुनते भी हैं। हर घंटे की अद्यतन जानकारी और प्रामाणिक जानकारी हमारे समाचार बुलेटिनों के जरिए आप सुन पाते हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए।
0: 10 जनवरी 1993 में आकाशवाणी दिल्ली से पहला फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया और श्रोताओं, अब फोन इन कार्यक्रम के जरिए हम सीधे श्रोताओं तक जुड़ते हैं और उनकी पसंद के गाने, उनकी पसंद की बातें हम रेडियो पर प्रसारित करते हैं। लेकिन 10 जनवरी 1993 वो तारीख थी जब आकाशवाणी दिल्ली से फोन इन कार्यक्रम का पहला प्रसारण किया गया और अब श्रोताओं, आलम यह है कि अमूमन हर केंद्र से फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसके जरिए हम आम श्रोताओं तक अपनी पहुंच बहुत आसानी से बना पाते हैं और इन फोन इन कार्यक्रमों में ज़्यादातर हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित होते हैं। हमारे केंद्र से भी आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। प्रसारण समय होता है प्रति रविवार और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रति बुधवार सुबह 10:30 से।

आकाशवाणी का ये सफरनामा, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि दिलचस्प है और रोचक भी है, जिसका इस छोटे से कार्यक्रम में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं श्रोताओं कि गागर में सागर भर दिया जाए। ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहा, लेकिन 1993 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी आकाशवाणी के सफरनामे में, जब नियमित रूप से FM चैनल का प्रसारण शुरू किया गया। और ये लोकल रेडियो स्टेशन होते हैं श्रोताओं, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर चलते हैं, जैसे हमारा बालाघाट स्टेशन जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन

101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन पाते हैं। नियमित रूप से 1993 से एफएम चैनलों का प्रसारण हुआ। दिल्ली में अपने अलग एफएम चैनल हैं, बालाघाट का अलग एफएम चैनल है, हर जहां जहां आकाशवाणी केंद्र हैं उन पर एक एफएम चैनल भी वहां पर दिया गया है जो कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के अलावा है। 1 अप्रैल 1994 से स्काई रेडियो का शुभारंभ किया गया। और श्रोताओं, ये जो तकनीक की बात हम करते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में हम लगातार तकनीक के साथ चलते रहे, और इसके चलते 15 जनवरी 1995 में रेडियो पेजिंग सेवा का उद्घाटन शुरू किया गया। एक दौर था जब पेजर्स हुआ करते थे और उन पेजर्स के जरिए लोग रेडियो सुना करते थे, वही रेडियो पेजिंग सेवा 15 जनवरी 1995 से शुरू की गई। श्रोताओं, ये सफरनामा आकाशवाणी के 90 वर्षों का लगातार चल रहा है और हम 2026 के वर्ष में हैं, जब 1 जनवरी 1936 से लेकर 2026 तक का ये 90 वर्षों का सफर बड़ा ही रोचक और हर तकनीक से प्रतिस्पर्धा करता हुआ आगे बढ़ता रहा, और आकाशवाणी हमेशा आपके दिलों के करीब, आपके पास और आपकी अपनी आवाज बनकर हमेशा आपके पास रही। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और 13 जनवरी 1997 को इंटरनेट सेवा पर ऑडियो इन रियल टाइम सेवा का आरंभ किया गया। 1998 में एफएम 1 प्रसारण 24 घंटे के लिए प्रारंभ किया गया, और इसी के आगे बढ़े श्रोताओं, तो 25 जनवरी 1998 में इंटरनेट पर टेलीफोन से आकाशवाणी समाचार प्रारंभ किए गए। 1 सितंबर 2001 में एफएम 2 प्रसारण सेवा आरंभ की गई, और श्रोताओं, ये क्रम रुका नहीं बल्कि लगातार बढ़ता चला गया। 27 फरवरी 2002 की तारीख में आकाशवाणी से डिजिटल सैटेलाइट होम सर्विस भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए BC1417 पर प्रारंभ की गई, और हम खाड़ी के देशों के भी इतर भारतीय उपमहाद्वीप के और दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के लिए भी में भी हमारा प्रसारण सुना जाने लगा। 6 अप्रैल 2003 की तारीख एक बार फिर मील का पत्थर साबित हुई और स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया आकाशवाणी का इतिहास, जब 6 अप्रैल 2003 को आकाशवाणी दिल्ली के चैनलों के नए नामकरण किए गए। दिल्ली ए को इंद्रप्रस्थ चैनल, दिल्ली बी को राजधानी चैनल, और एफएम 1 को एफएम रेनबो और एफएम 2 को एफएम गोल्ड नाम दिया गया। तारीख थी 6 अप्रैल 2003। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का लोकप्रिय एफएम चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए हमारे साथ। चलिए श्रोताओं, नाम भले ही बदले लेकिन काम वही रहा, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन करना। तो चलिए, मनोरंजन की जब भी बात आती है तो हमारे श्रोताओं के लिए हमारे गीत हमेशा तैयार होते हैं। चलिए एक गीत सुनते हैं, फिर इस सफरनामे को आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये सफरनामा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। आकाशवाणी के 90 वर्ष हो चुके हैं श्रोताओं, और इन 90 वर्षों की यात्रा को इस छोटे से कार्यक्रम में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलिए, ये सफरनामा यूं ही चलता रहा। 1 जनवरी 1936 से आकाशवाणी का ये सफरनामा श्रोताओं शुरू हुआ 1 जनवरी 1936 से। नाम बदलते रहे, ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी, और फिर बहुत से चैनल, फिर डिजिटलाइजेशन, और अब हम न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म वेव पर भी उपलब्ध हैं। सफ़रनामे की जो बात हम कर रहे थे, तो 16 मई 2003 को FM गोल्ड के कार्यक्रमों का प्रसारण 10 राज्यों के 21 स्थानीय केंद्रों से आरंभ हुआ। और श्रोताओं, ये जो सफरनामा है आकाशवाणी के 90 वर्षों का, लगातार अनवरत जारी है। हम आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं, और हम आपको बता दें कि आकाशवाणी 413 से ज्यादा रेडियो स्टेशनों पर उपलब्ध है, और हम 23 भाषाओं में प्रसारण करते हैं, और न केवल भाषाओं में बल्कि 146 से ज्यादा बोलियों में भी हमारे प्रसारण किए जा रहे हैं। आप यदि हमें ध्यान से सुनते हैं, लगातार नियमित सुनते हैं, तो बुंदेली भाषा के समाचार भी हमारे केंद्र से आप सुन पाते हैं। आकाशवाणी भोपाल से ये समाचार प्रसारित किए जाते हैं। चलिए श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सफरनामा जो 1 जनवरी 1936 से शुरू हुआ और लगातार 2026 तक जारी है, हमारी कामना है कि ये आकाशवाणी लगातार यूं ही चलती रहे, अनवरत आपके साथ, आपके पास रहे, यूं ही आप हमें सुनते रहें, बस यूं ही हमारा कारवां चलता रहे। और हम बस आखिर में यही कहेंगे कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर आप जैसे श्रोताओं का साथ मिलता गया और कारवां लगातार बढ़ता चला गया। श्रोताओं, ये था आकाशवाणी के 90 वर्षों पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी का सफरनामा। प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की थी। इस सफरनामे के तथ्यों को आपके साथ साझा कर रहा था मैं, विनय श्रीवास्तव। और अब चलते चलते

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी का सफरनामा, वाचन और संकलन था विनय श्रीवास्तव का, प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रेडियो मित्र अभिषेक तिवारी आज फिर हाजिर हूं लेकर आप सभी युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी एक नए विशेष अंक के साथ। दोस्तों, प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व स्तर पर जनकल्याण के रूप में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित भोजन के महत्व और खाद्य जनित रोगों की रोकथाम हेतु जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के हित में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र अर्थात की यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और फूड ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त नेतृत्व में मनाया जाने वाला ये दिवस इस बात पर विशेष जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पादों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी की जिम्मेदारी है। एक ओर पौष्टिक प्राकृतिक खाद्य के उपयोग द्वारा अन्न उगाया जाए और वहीं एक के द्वारा उपभोक्ताओं तक शुद्ध रूप में इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। इस रूप में भी खाद्य सुरक्षा दिवस विशेष भूमिका निभाता है। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ने से पूर्व हम चलेंगे मनोरंजन की ओर और सुनवाएंगे आपको 1954 के दौर का वो गाना जो कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर का है। इसे सुर दिया है लता मंगेशकर जी ने और संगीतकार हैं SD बर्मन। ए मेरी जिंदगी।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: दोस्तों, गीत एवं संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। गीत के पूर्व हम चर्चा कर रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। दोस्तों, प्रतिवर्ष ये दिवस एक विशेष थीम के अनुसार मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, अर्थात फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। ये थीम खाद्य जनित बीमारियों के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी बोझ को कम करने और निवारक उपायों पर जोर देती है। दोस्तों, ये दिवस ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। ये कृषि, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य जो है दूषित खाने से होने वाली बीमारियों के प्रति जनमानस को जागरूक करना है और इसी के साथ सुरक्षित खानपान को बढ़ावा देना भी होता है, ताकि व्यक्ति हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी रहें। खेत से लेकर थाली तक खाने की क्वालिटी सही होने के साथ ही स्वच्छता भी सबसे जरूरी है। आगे बातचीत में हम जानेंगे कि किस प्रकार की स्वच्छता हमें अपनाने की जरूरत होती है। तो बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर, सुनाते हैं आपको गीत जो कि लिया गया है सन 1981 के फिल्म सिलसिला से और इसके बोल हैं देखा एक ख्वाब।

दोस्तों, गीत के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। गीत पूर्व हम चर्चा कर रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की और खाद्य के दौरान दिए जाने वाले किन सुरक्षाओं की ज़रूरत होती है हमें, इस पे भी हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, कई मर्तबा कई व्यक्ति बाज़ारों का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि कई बार बाज़ारों में मिलने वाला खाना बैक्टीरिया रहित भी होता है और इस हेतु फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाया जाता है। वहीं यदि हम घर में भी खाना बना रहे हैं तो उस हेतु हमें कुछ जिम्मेदारियों का, या कहना चाहिए कि किन्हीं चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत होती है, जागरूकता को अपनाने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरी है कि बड़ों से छोटे बच्चों तक खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक सबसे पूर्व हमें हाथ धोने की आदत होनी चाहिए। अमूमन ज़्यादातर घरों में ये रूल फॉलो किया जाता है। कई बार हम जाने अनजाने खाने की चीज़ों को ऐसे ही छू देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो हैं वो खाने में लगकर हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जियों को काटने से पूर्व भी हमें हाथ धोने की ज़रूरत है। और इस अभियान के रूप में आप देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों तक भी ये चीज़ें पहुँचाई गई हैं और सभी बच्चे भी इसका पालन करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें हाथों को कम से कम 40 से 60 सेकंड तक लगातार साफ करने चाहिए। वहीं फल सब्जियों की सफाई की भी बात आती है तो बाहर से आने वाली फल सब्जियों में न सिर्फ

कीटनाशक लगे हो सकते हैं, बल्कि ये चीज़ कई हाथों से होकर गुजरती है। इस वजह से बैक्टीरिया फैलने का भी डर होता है। सब्जियां घर लाने के बाद पानी से धोने के साथ ही एक बाउल में आप सिरका या बेकिंग सोडा के पानी में घोल करके उसके साथ धुलने में उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आप सादे पानी से धोने के बाद उसे पका सकते हैं। तो बढ़ते हैं, चूँकि बात है खाद्य की और खाने से जुड़ी, तो अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिस गीत के बोल हैं चॉकलेट लाइम जूस। लिया गया है फिल्म हम आपके हैं कौन से, इसे बोल दिया है देव कोहली ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने अपने सुरों में।

दोस्तों, गीत के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। गीत के पूर्व हम चर्चा कर रहे थे फल और सब्जियों की क्लीनिंग कैसे करें, अपने हाथों की क्लीनिंग कैसे करें।

0: कर रहे हों या बना हुआ खाना स्टोर करना हो, ज़रूरी है कि आप खाने को इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया से बचा के रखें। इस हेतु कोई भी खाने की चीज़ अच्छी तरह से ढक कर रखें, जो कि अमूमन सभी घरों में किया जाता है। वहीं यदि आप फल और सब्जियां भी स्टोर कर रहे हों तो एयरटाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। याद रखें कि खाने को हल्के ठंडे टेम्परेचर पर ही स्टोर करना बेहतर होगा। साथ ही साथ कई मर्तबा क्या होता है कि हम फल और सब्जियों को काटने के बाद उन चाकुओं को वैसे ही रख देते हैं, तो दोस्तों किचन अप्लायंस की भी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करने के साथ ही किचन में यूज़ होने वाले हर अप्लायंस को क्लीन करने के साथ सैनिटाइज भी करने की ज़रूरत है, जैसे किचन काउंटर हो, चाकू हो या चॉपिंग बोर्ड जैसी चीज़ें हों। ये कई मर्तबा यूज़ के बाद क्लीन नहीं की जाती, इससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं जो खाने के साथ ही शरीर में पहुंचकर बीमार कर सकते हैं और बहुत बीमार कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी खाद्य के सुरक्षा कैसे की जाए इस पर आपने एक बेहतर समझ बना ली होगी और आप सभी इसे पालन भी कर रहे होंगे। आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः विश्व खाद्य सुरक्षा की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छा खाएं, अच्छे सेहतमंद रहें। अब बढ़ते हैं दोस्तों आकाशवाणी की ओर। आकाशवाणी जिसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ने राष्ट्र की सेवा में, अर्थात ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्र की सेवा में अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वहीं वर्ष 1957 में इसका आधिकारिक नाम आकाशवाणी रखा गया, जिसका अर्थ होता है आकाश से आने वाली आवाज, जिसे आप सभी ने बहुत चाहा है। बहुत वर्तमान में आकाशवाणी 23 भाषाओं में और 189 बोलियों में प्रसारण कर देश की लगभग अधिक से अधिक आबादी तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी युवा श्रोताओं और अन्य श्रोतागण भी इन कार्यक्रमों को सुनते हैं और वो समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया हम सभी तक पहुंचाते रहते हैं। आइए आप सभी के बीच ही उपस्थित एक युवा श्रोता की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं आपको।
1: सुखाकर बालाघाट में रहता हूँ, वार्ड नंबर 8 में। बालाघाट आकाशवाणी सुनता हूँ और रोज मेरा मनोरंजन होता है बालाघाट आकाशवाणी के, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। युवाणी, हेलो फरमाइश, किसान वाणी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगते हैं मेरे को। 90 साल हो चुके हैं आकाशवाणी को, इसीलिए मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे से प्रोग्राम देते हैं। सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ के अच्छे लगते हैं मुझे, और बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है ये आकाशवाणी, बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आगे भी अच्छा रहेगा। अब कल से 91 शुरू हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आकाशवाणी को मेरी तरफ से। मैं नरेश कुकरकर बालाघाट।
0: दोस्तों इसी क्रम में लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर युवा श्रोताओं से ली गई विनय श्रीवास्तव जी की बातचीत।
2: श्रोताओं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस मौके पर हम इस पूरे वर्ष को 2026 को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। 1 जनवरी 1936 से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में शुरू हुआ ये सफर आज अनवरत जारी है और आज हम न केवल भारत में बल्कि डिजिटलाइजेशन के बाद समूचे विश्व में सुने जा रहे हैं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। आज प्रसंग ऐसा बन पड़ा है कि हमारे बीच मौजूद हैं युवा श्रोता जो कि रेडियो को कितना जानते हैं, किस तरह से उनकी उत्सुकता है रेडियो को लेकर इन 90 वर्ष के पूर्ण होने पर, आज हम उनसे इस कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे और जानेंगे उनके विचार। सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं।

0: आप अपना नाम बताइए।
1: सर मेरा नाम मोहित दशहरे है।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: सर मेरा तो 12th कंप्लीट हो चुका 2021 में, लेकिन अभी कॉलेज स्टार्ट है।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
2: सर मेरा नाम सपना कोलते है। सर मैं पीजी कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा।
0: और हमारे बीच और युवा श्रोता हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: नमस्कार सर, मेरा नाम मोनाक्षी बिसेन है। मैं बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से।
0: आप अपना नाम बताइए।
4: सर मैं जय कुमार रहांगडाले, बीएससी सेकंड ईयर शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाहाट से।
0: एक युवा श्रोता और हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताइए।
5: सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम प्रगति बोकड़े है और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की फाइनल ईयर स्टूडेंट।
0: चलिए, ये सारे युवा साथी आज हमारे बीच हैं और आकाशवाणी की 90 वर्ष की जो पूर्ण हो रहे हैं उस मौके पर हमने उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है। श्रोताओं, एक एक करके हम जानना चाहते हैं कि रेडियो की जो उपयोगिता है इस 90 वर्ष के अवसर पर, हम अपनी युवा पीढ़ी से जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से रेडियो को देखते हैं, किस तरह से रेडियो को सुनते हैं। ये बताइए जय, कि आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
4: सर मैं रेडियो तो अभी सुन रहा हूँ। कहना चाहिए कि कुछ मायने हुए कि मुझे इसके पहले जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मन की बात वाला प्रोग्राम चलाया जा रहा था, तब से सुन रहा हूँ मैं।
0: तब से सुन रहे हैं जी। तो मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सी बातें युवा श्रोताओं के साथ साझा भी करते हैं, तो उनमें से कोई ऐसी बात जो लगी कि हाँ ये बात अमल में लाने योग्य है, बताइए जय।
4: सर उसमें तो अमल में लाने योग्य मुझे कुछ बातें लगी, जिसमें जैसे कि अपन जो अभी की जो पीढ़ी है जो मोबाइल को लेकर के है, कि यानी हर चीज जैसे हर कुछ भी चीजों की सबसे पहले अपन पकड़े मोबाइल और AI चैट जीपीटी जैसे अभी जो आया है उसका उपयोग करते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो ये सब चीज नहीं हुआ करती तो हम सब चीज को जैसे रेडियो को सुना करते थे, अभी ये सब चीज आने से रेडियो का सुनना कम कर दिया अभी।
0: तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, जो युवा पीढ़ी आजकल इन टूल्स पर, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो टूल है, ऐप है, उसके पर ज्यादा भरोसा कर रही है। अगला प्रश्न हम प्रगति से करेंगे। प्रगति, आप कब से रेडियो सुन रही हैं?
5: जी सर। सर मैं तो बचपन से ही रेडियो सुन रही हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता को रेडियो बहुत पसंद है और हम लोग की शुरुआत भी रेडियो की वंदना से होती थी और हम लोग सोते भी थे तो तब गजलें चलती थी रात में। तो सर रेडियो का मेरे लाइफ में बहुत एक अहम योगदान रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे लाइफ में अफेक्ट कर रहा है सर, हमारी क्रिएटिविटी उससे खत्म हो रही है। तो मैं रेडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि ठीक है हमें नए ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने रूट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रेडियो हमें जो सिखाता है धैर्य, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सारे प्रोग्राम सुन के जो समझती हूँ सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सर हम आजकल 30 सेकंड का रील स्क्रॉल कर लेते हैं और हमारा माइंड इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है कि बस जल्दी जल्दी कुछ भी चाहिए, बट रेडियो हमें सिखाता है कि हमेशा धैर्य बनाए रखो और परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात प्रगति आपने कही। एक प्रश्न हम मीनाक्षी से करना चाहेंगे कि अभी बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में रेडियो को आप कहाँ पाती हैं, किस तरह से आप देखती हैं रेडियो को इस दौर में?
3: सर वैसे मैं वास्तविकता बताऊँ तो कुछ ऐसे चैनल आ जाते हैं जो मेरे पताशे ही सुनते हैं, तो वो मुझे अपने आप रेडियो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पर जैसे आप आपके प्रश्न पे आते हैं, तो जो AI है आज के जमाने में हर एक चीज AI पे डिपेंडेंट हो रही है, डिपेंडेंसी AI पे और ज्यादा बढ़ती जा रही है।
0: अगला प्रश्न हम सपना से करेंगे, जो कि वाराणसी SSP कॉलेज की छात्रा है। सपना ये बताइए कि रेडियो आप कब से सुनती हैं?
2: सर रेडियो मैं 6th-7th क्लास में थी तब से सुन रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को सुनना आज भी पसंद है और घर पे सुनते हैं मेरे पापा, तो मैं भी सुनती हूँ। मॉर्निंग में चालू कर लेती हूँ, मतलब स्टार्ट कर देती हूँ काम करते करते, 6 बजे से मतलब 8 बजे तक मैं सुनती हूँ। उसमें अच्छे प्रोग्राम आते हैं, जैसे 7:20 पर नमस्कार बालाघाट, वो काफी बहुत अच्छा है। उसमें हमारे महापुरुषों के कुछ कोट्स आते हैं अच्छे, जो श्रोताओं को मोटिवेट करते हैं, उससे मतलब काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो अच्छे सॉन्ग आते हैं, मतलब हमको सकारात्मकता की ओर आकर्षित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इवनिंग में मैं युवानी कार्यक्रम सुनती हूँ, वो भी काफी अच्छा, उसमें जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम, मतलब मैं अच्छा सुनती हूँ, ये सब पसंद है।
0: ये जानकर सपना जी अच्छा लगा कि आप रेडियो सुबह से सुनती हैं और लगातार सुनती हैं। आपने कार्यक्रमों के नाम बताया, युवानी, नमस्कार बालाघाट, यूं ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए। अब मोहित से हम जानना चाहेंगे जो कि हमारे बीच हैं स्टूडियो में। मोहित, ये बताइए कि रेडियो आपकी पढ़ाई में कितना सहायक साबित होता है? आज के दौर के युवा जो हैं, हम देखते हैं ज़्यादातर गूगल करके प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं, लेकिन रेडियो आपके लिए कितना उपयोगी साबित होता है पढ़ाई के लिए?
1: सर, जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो जैसे कि SSC और CGL वगैरह जारी चीज़ें जो है उस पर बहुत सारे जो GK के क्वेश्चंस जो है उस पर जैसे प्रोग्राम आते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि कुछ देर पश्चात आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसे आप जवाब तैयार रखिए। ये सारी चीज़ें सर बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होती है सर।
0: चलिए, ये जानकर अच्छा लगा हमारी युवा पीढ़ी से कि वे आज भी रेडियो को सुनते हैं, और खासकर युवाणी कार्यक्रम में जो 5 प्रश्न हम करते हैं सामान्य ज्ञान के, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमारे बीच युवा साथी हैं श्रोताओं, और हम उनसे जानना चाहते हैं लगातार कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये सफर में आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और रील बनाने का दौर है, ऐसे दौर में रेडियो कितना प्रासंगिक है युवा पीढ़ी में। तो चलिए, इसी बात को लेकर फिर एक बार हम युवा पीढ़ी के बीच में हैं, युवा श्रोताओं के बीच में हैं। प्रगति से जानना चाहेंगे कि आज का जो दौर, प्रगति, आप देखते हैं कि आप भी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें रेडियो की उपयोगिता कितनी और कितनी प्रासंगिक आपको लगती है?
5: सर, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं इसका आंसर हमेशा से देना चाहती थी, जो भी मेरे श्रोता साथी सुन रहे हैं मुझे। सर, मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, समझ लीजिए। तो सर, मैं सोशल मीडिया जब यूज करती हूँ तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि उसमें जितनी जल्दी एक ऑथेंटिक जानकारी नहीं वायरल होती है, उससे ज्यादा जल्दी सर फेक न्यूज़ ज्यादा हो जाती है, और हम पता भी नहीं लगा पाते कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, और जब तक हमें पता चल पाता तब तक हम उसे बहुत लोगों को फॉरवर्ड कर चुके होते सर। तो जैसे हर चीजों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन सर रेडियो का एक बहुत ही अच्छा पहलू और बहुत ही सकारात्मक पहलू जो मुझे लगता है वो है इसकी ऑथेंटिसिटी। उसमें जो भी चीजें होती है सर वो ऑथेंटिक होती है, वो सभी के लिए प्रासंगिक होती है, और उसे अगर हम सुन के किसी को अगर बता रहे हैं, अगर मेरी कोई, जैसे मोहित ने कहा था कि हम युवाणी में जो 5 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो सर अभी कई पेपर भी अगर हम चेक करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कई डले होते हैं, तो सर मैं सभी प्लेटफॉर्म्स को तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट में सर कुछ आंसर जो होते हैं मैं मिलाते रहती हूँ कभी कभी, तो वो सर कहीं गलत हो जाते हैं, कहीं पे आंसर कहीं और, गूगल में कुछ और दिखा रहा है, AI कुछ और दिखाता है, मतलब ऐसी चीजें हैं सर। और तो हम अगर वही आंसर मैंने अगर रेडियो से सुना तो आई एम 100% श्योर कि ये आंसर ऑथेंटिक है एंड आई विल गो फॉर इट। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्चाई और ईमानदारी की जो मिसाल रेडियो ने हमेशा से बनाई रखी है वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है सर।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात प्रगति ने कही कि प्रामाणिकता जो है आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, AI के दौर में हम प्रामाणिकता के रूप में जाने जाते हैं, और 100% प्रामाणिक होती है हमारी खबरें, हमारे समाचार। ये जानकर अच्छा लगा कि युवा पीढ़ी भी इस चीज को मानती है कि आज का जो दौर है और आने वाला समय भी रेडियो का ही होगा, जिसमें प्रामाणिकता की जब भी बात होगी तो रेडियो की बात सुनी जाएगी और कही जाएगी। आखिर में चलते चलते हम अपने सभी प्रतिभागियों से जो हमारे स्टूडियो में आए हैं युवा साथी, उनसे जानना चाहेंगे एक एक करके कि रेडियो को वो आने वाले समय में किस रूप में देखना चाहते हैं।
1: सर, हमारे यहाँ तो रेडियो के स्टार्ट मेरे उठने से पहले ही हो जाती थी। मेरे पिताजी मेरे उठने से पहले रेडियो चालू करके मुझे उठा दिया करते थे, और अभी भी हमारे रेडियो चालू ही रहता है सर, और उसी से मुझे रेडियो सुनने की थोड़ी आदतें हो गई और वो अभी भी चलता ही जा रहा है। सर, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि सर आने वाले समय में रेडियो को हम सर जैसे मोबाइल से सर सारी चीजें तो मिल ही जाती है, लेकिन जो क्या कहना चाहिए हमें पर सेकंड की स्पीड में मिल जाती है, परंतु जो हमें सुनाया जाता है वो जल्दी याद हो जाता है। इसलिए मेरा ये जान मानना है कि मनोरंजन के तौर पर हो, शिक्षा के तौर पर हो या अन्य क्षेत्र में हो, परंतु जो रेडियो प्रसारण जो होता है वो एकदम सटीकता से माइंड में बैठ जाता है। धन्यवाद।

0: चलिए मोनाक्षी से जानते हैं।
1: जी धन्यवाद सर। आने वाले समय में, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले समय में मैं रेडियो को किस रूप में देखना चाहूंगी, तो रेडियो का तो है ही ऐसा, पर आने वाले समय में देखूंगी कि जैसे पुराने समय में भी हम जिस प्रकार से सुबह की शुरुआत रेडियो की गूंज से होती थी, और हमारे चाहे जो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो क्रिकेट के जो स्कोर्स रहते थे वो रेडियो पर सुनते थे, तो मैं यही चाहूंगी कि आने वाले समय में भी वो जो सुबह की पहली किरण से जो रेडियो की गूंज उठती थी और जो सबको नींद से जगाने के लिए भी प्रयोग में आती थी, मैं उस रूप में आके रेडियो को देखना चाहूंगी।
2: सर रेडियो को तो हम मेरा मतलब है कहना चाहूंगा कि जो पहले से चलता आ रहा है वैसे ही देखना चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में कितना भी यानी एआई का जमाना कुछ भी हो जाए, लेकिन रेडियो का जो है जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जैसे कहावत है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपन एआई चैट जीपीटी कितना भी यूज कर ले, कितना भी यानी सोशल मीडिया वर्क कर ले, बट ये सारी चीजें लास्ट में वो अपना क्या कहना चाहिए रेडियो पर ही रहेगी।
3: सर जैसे आपने रेडियो की प्रासंगिकता की बात की, तो मैं सर एक कोट के साथ शुरू करना चाहूंगी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अभी थोड़ी देर पहले सर हम सब वही डिस्कस कर रहे थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी गूंजित अनंत निक दिग दिगंत शिव मंगलवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी। और सर बचपन में मैं सुनती थी एक लाइन, गा

0: सर, ये जो गांव हो, प्रदेश हो या किसी शहर की हो राजधानी, आज सर हम लोग स्पॉटिफाई प्रीमियम दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन खरीद रहे सर, पर एज ए स्टूडेंट हमारे पास उतना पैसा होता भी नहीं है, फिर भी हम सब्सक्रिप्शन के लिए अपने पैसे लगा देते कि गाने सुनने ये। जब मेरा मानना है, मैं अपने सारे श्रोता साथियों से बार बार ये कहती हूँ, जब हमें फ्री में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास आकाशवाणी, चाहे हम गजल सुने जगजीत सिंह की हो हम, या फिर लता मंगेशकर जी की बात करें, कुमार सानू की बात करें, या नए नए जितने भी आर्टिस्ट कलाकार आते हैं, और रेडियो के माध्यम से इतने सारे इंटरव्यूज होते हैं सर, जो इतना ज्ञान का भंडार लिए हुए, सारी लूसेंट का नॉलेज तो उसी के अंदर मुझे ऐसा लगता है समाहित है। और लेकिन इसका एक बुरा पहलू मुझे समझ में आ रहा है सर, कि धीरे धीरे रेडियो को लोग छोड़ते जा रहे हैं। हाँ। और ये बहुत दुख की बात है, और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है कि रेडियो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है सर, हम लोग इससे बहुत दूर जा रहे हैं। तो बार बार मेरी अपने सभी युवा साथियों से और सभी देशवासियों से अपील है कि आप खासकर बच्चों से जो मेरी तरह स्टूडेंट्स है, प्लीज सब्सक्रिप्शन में पैसे ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, बल्कि हमारी आकाशवाणी के सुरों को, तालों को और संगीत की मधुर ध्वनि को हमेशा अपने दिल में पिरोए रखिए। धन्यवाद।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात। आखिर में सिर्फ एक प्रश्न मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, एक्टिव भी हैं, और कितने हमारे जो श्रोता साथी हैं, युवा साथी हैं, वो कितने लोग जानते हैं कि आकाशवाणी भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है? आप लोग किस तरह से मोबाइल पर सुन सकते हैं, कौन सा ऐप है, क्या आप जानते हैं, बताइए मोहित।
2: सर, मोबाइल में ही ऑलरेडी एप्लीकेशन रहता है एफएम मोड, जिसमें फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाओं में आप हम सुन सकते हैं। तो आप सभी श्रोता बंधुओं से अपील है कि आपके मोबाइल में जो एफएम मोड जो होता है,
3: मोबाइल में एक ऐप होता है न्यूज ऑन AIR ऐप होता है, तो आप सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि उसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप रेडियो सुनने के लिए कर सकते हैं।
4: सर, एफएम रेडियो तो मोबाइल में जो ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड रहता है उसी से सुनते हैं हम जो।
0: सर, आकाशवाणी का एक ऐप है न्यूज ऑन AIR, उसमें आप जिस भी स्टेशन की ट्यून अगर लगाना चाहते हैं, जैसे मैं अगर बालाघाट स्टेशन सुन रही हूँ तो FM 101.3 MHz मैं ट्यून करूंगी तो मुझे आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र सुनाई देगा। वैसे ही उसमें आकाशवाणी के बहुत सारे जितने भी केंद्र संचालित होते हैं उनकी ट्यून से हम लगातार उनके प्रोग्राम 24 घंटे चलते रहते हैं, तो हम उन्हें सुन सकते हैं। तो मेरे सभी युवा साथियों से अपील है, अगर आप रेडियो में ज्यादा टाइम ऐसे नहीं दे सकते बैठ के, तो आप अपने फोन में भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और ट्यून लगा के सुनते रहिए।
1: चलिए, युवा साथी, आप सभी हमारे स्टूडियो आए और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर अपने विचार आकाशवाणी के प्रति, रेडियो के प्रति जाहिर किए, साझा किए, हमारे साथ बातचीत की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद सर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के इसी क्रम में आगे बढ़ने से पूर्व सुनिए एक सूचना। कल शाम 6:30 बजे सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम की अंतिम कड़ी, जिसमें शामिल हो रहे हैं विविध भारती मुंबई के वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान। तो समय याद रखिए, कल शाम 6:30 बजे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: पसंद है, बेबी को बेस पसंद है।
1: दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम युवावाणी में एक नए विशेष अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र अभिषेक तिवारी को दें अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM पर। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। वक्त है फिल्म संगीत का। आइए हम आपको सुनवाएं कुछ फिल्मी गीत।

कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये गीत था फिल्म साजन चले ससुराल का। आइए अब हम आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म सात रंग के सपने से। आवाजें आप सुनेंगे बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की।

0: श्रोताओं, अलका याग्निक के गाय फिल्म साजन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गर्मी है जनाब, लेकिन बातों और गीतों की ठंडी फुहार भी साथ है। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में, जिसे लेकर आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त शारदा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। जून का महीना यानी तपती धूप, गर्म हवाएं, आम का मौसम और ठंडी ठंडी यादों का खजाना। कहते हैं जून की दोपहर और चाय की केतली, दोनों का तापमान बराबर होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले 30 मिनट तक हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कुराहटें और बेहतरीन फिल्मी गीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से और मौसम की मस्ती को और बढ़ा देते हैं।

0: तो श्रोताओं, गीत पसंद आया? ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे सुमधुर गीत हम आपको सुनवाएंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट। बहरहाल बारी एक संदेश की।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 2583684।
0: जून का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है गर्मी की छुट्टियां, जो कि अब बहुत कम हो गई हैं। सुबह देर तक सोना, दोपहर में आम खाना और शाम को दोस्तों के साथ खेलना, नाना नानी के घर जाने का उत्साह भी जून की खास पहचान हुआ करता था। कभी ट्रेन का सफर, रास्ते के समोसे और घर पहुंचते ही मिलने वाला प्यार। सच में जून सिर्फ गर्मी नहीं, यादों का मौसम भी था और मौसम है। इसी प्यारी याद के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल शाम 6:30 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम की अंतिम कड़ी, जिसमें शामिल हो रहे हैं विविध भारती मुंबई के वरिष्ठ उद्घोषक यूनिस खान। समय याद रखिए, कल शाम 6:30 बजे। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, 2 जून की गर्मी कभी कभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। इस मौसम में खूब पानी पिया जाए, घर से निकलते समय सिर ढाका जाए, हल्के रंग के कपड़े पहने जाए और दोपहर की तेज धूप से बचने की कोशिश की जाए, तो हम इस मौसम में भी स्वयं को स्वस्थ रखकर मौसम का और प्यारे प्यारे गीतों का भी आनंद ले ही सकते हैं।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, RBI कहता है
1: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि

श्रोताओं, बात चल रही है जून के महीने की। सूरज देवता सुबह से ही अपनी पूरी शक्ति दिखाने लगते हैं। सुबह 8:00 बजे तो लगता है दोपहर हो गई। लेकिन जून की गर्मी की भी अपनी एक अलग पहचान है। आम, तरबूज, ठंडी सिकंजी, पेड़ की छांव और छुट्टियों की यादें, सब कुछ इसी मौसम से तो जुड़ा है ना।

तो श्रोताओं, धीरे धीरे हम भी आ ही पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे जून की दोपहर का, जून के महीने का। जून की दोपहर का अपना अलग ही अंदाज होता है, सड़कें खाली, पेट शांत और लोग घरों में आराम करते हुए। ऐसी दोपहर में ठंडे पानी का गिलास या कुल्फी मिल जाए तो क्या बात है। पहले के समय में लोग अक्सर आंगन में खाट डालकर आराम करते थे। आज ये नज़ारा शहर में तो बिल्कुल नहीं, गांव में शायद कभी कभी मिल भी जाता है। जून के आखिरी दिनों में हर किसी को इंतज़ार होता है बारिश का। आसमान में बादल दिखाई देते ही दिल खुश हो जाता है। पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू तो जैसे सीधे दिल तक पहुंचती है। हर कोई चाहता है गर्मी थोड़ी कम हो और मौसम सुहाना बन जाए। दोस्तों, जून का महीना हमें धूप भी देता है और ढेर सारी यादें भी। कभी आम का स्वाद, कभी छुट्टियों की मस्ती और कभी बारिश के इंतज़ार का रोमांच। उम्मीद है आज का यह सफ़र आपको पसंद आया होगा। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ और हमें दीजिए इजाज़त कार्यक्रम समाप्त करने की। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है, आप जानते ही हैं। ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गजल से।

सुधा मल्होत्रा की गाई इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम एंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी शाम 7:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा शाम 7:10। 7:21 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने फिल्म संगीत के तहत।

हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे। फिर एक बार आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत 8:15 पर समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की हम आपको सुनवाएंगे।

रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार। 9 बजे से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 9:15 का समय होगा स्पॉटलाइट समाचारों के लिए और 9:30 से पुनः हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

श्रोताओं, रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत के तहत। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 11:05 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही हम अनुप्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की।

एक नज़र डालते हैं हमारी कल की प्रातःकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होगी सुबह 5:56 से। सभा की शुरुआत में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:00। 6:05 पर होगा भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना। 6:30 पर आप सुनेंगे जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रम चिंतन। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से रोजाना सुबह 6:35 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम श्रीरामचरित मानस कान। 6:45 का समय होता है कार्यक्रम विवरण का और 6:50 पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। समाचार अपने नियमित समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे और सुबह 7:20 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश है आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद

0: उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों वक्त है कब छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जाँच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
3: अलग अलग ढंग के कैंसर देखे, जो तथ्य है वो बेहद चिंताजनक। अब अगर 2598 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल रहा, 254 सस्पेक्टेड है, तो आप कल्पना करो कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो और नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा है मौके कैंसर वाले। ये मौका कैंसर क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता, ये आफत हम खुद बुलाते हैं। ये होता है तमाकू से। इलाज कराते कराते परिवार टूट जाता है, कई बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं, बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं।
1: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन धार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि
4: साइकिलिंग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है, एक्सरसाइज, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहे, हम ऊर्जा के साथ काम करें, और अंदर से व्यक्ति जब मजबूत होगा तो जीवन में वो हर काम को मजबूती से कर पाएगा। और आज इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, और जीवन में हर व्यक्ति को साइकिलिंग करना चाहिए, ये सभी से मैं आह्वान करती हूँ।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं। साथ ही ये मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला खिलाड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मॉनसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीटवेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। ये पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गया सैलरी?
2: हाँ।
1: आ? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बनाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: FMN पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, आप सुनिए कुछ फिल्मी गीत।

फिल्म अलबेला के लिए ये आवाजें थी अलका याग्निक, कुमार शानू और उदित नारायण की। आइए अब हम आपको सुनवाएं फिल्म आशिक का गीत, कुमार शानू अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जी मैं जगत सिंह चढ़ार ग्राम बेपलिया,
2: हाँ
1: तहसील बेगमगंज जिला रायसेन।
2: जगत सिंह चढ़ार, चढ़ार साहब क्या सवाल है आपका?
1: जी अब ये बोल रहा मूंग आ गई है, तो मूंग काट के ऐसी कौन सी फसल है अच्छी जल्दी जाए मक्का की?
2: अच्छा, मूंग के बाद में आपको मक्का की फसल लगानी है ऐसा?
1: जी जी जी,
2: तो मक्का लगाना चाहते हैं आप, तो आप बताएं कि आपका कितनी खेती है आपके पास?
1: खेती तो मुझकी अभी 3 एकड़ में मूंग वही है।
2: तो पूरे 3 एकड़ में मक्का लगानी है?
1: जी नहीं, और भी लगना है मगर उसमें मूंग के खेत की लगने अलग,
2: मतलब मूंग के बाद में आपको मक्का लगानी है, तो आपको जो है मक्का फसल लगाने के लिए क्या करनी है, क्या तैयारी करनी है, ये जानकारी चाहिए।
1: जी
2: चलिए हम कोशिश करते हैं। धोटी साहब
3: जी,
2: जैसे कि हमारे श्रोता है तो ये
3: मूंग के बाद मक्का लगाना चाहते हैं, मक्का की इस समय जो है लगाने का अच्छा समय आ रहा है, और मूंग यदि लगा करके मक्का लगा रहे तो वैसे भी ये जो हरित खाद जिसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, उसका काफ़ी फायदा इनको मिलने वाला है। और जहाँ तक किस्मों की बात है, वो किस्में लगाते समय अपने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो प्रचलित किस्में हैं जिनको सफलतापूर्वक पूर्व में लगाया गया है, उन किस्मों का चयन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त नमी, बारिश की व्यवस्था होने के बाद ही बुआई करें। कई लोग सूखे में बुआई कर देते हैं तो लंबे समय तक पानी नहीं आता, या पहली बारिश बहुत तेज आती है तो उस समय परिस्थितियां खराब हो सकती है। तो सही विचार कर उपचारित बीज ही बोए, और पर्याप्त अंतर पर रखेंगे बीजों का, पौधों का, कतार का, तो ज़्यादा लाभ होगा। कीड़ों की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
2: जी तो चढ़ार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और ख़ास तौर से मूंग के बाद में मक्का की खेती करने की आपने जानकारी ली। अगले किसान भर लाइन पर हैं, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं। जी हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी सर नमस्ते
2: जी, आप शुभ नाम बताएं, जगह का नाम बताएं और सवाल करें।
4: जी ग्राम देवपुर पोस्ट बमनोरा जिला छतरपुर से बोल रहे हैं, हुकम चंद यादव।
2: हुकम चंद यादव जी, सवाल करें आप।
4: जी सर, जो अपने गर्मियन में उड़दा भाए हैं वो अपन बरसात में भी बोई, नया बीज
2: बोए? गर्मी में उड़द बोए आपने, वही बरसात में लगा सकते हैं क्या, आपका सवाल ये है?
4: हाँ जी जी
2: बिल्कुल, आपको धोटे साहब बता रहे हैं क्या करना है।
3: देखिए जो गर्मी में आपने उड़द बोया है उसको आप बरसात में बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो बीज आपने उड़द का लिया है वो अच्छी तरह साफ़ सुथरा हो, उसमें किसी प्रकार का कचरा और दाल वगैरह न हुई हो, उसको अच्छी तरह से आप सफाई करके अच्छे बीजों का ही उपयोग करें। और अंकुरण को सही होगा या नहीं यह

0: जांच करने के लिए 100 दाने भिगा करके रख दीजिए और उसमें देखिए कि कितने दाने अंकुरित होते हैं। वैसे इसके अंकुरण में या बोने में कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा कि जब फसल तैयार हो जाती है और किसी कारणवश कट नहीं पाती, पानी आ जाता है, तो फलियों में ही दाने उग जाते हैं। यद्यपि बहुत सी दूसरी फसलों में ये स्थिति रहती है कि ताज़े बीजों को उसी समय नहीं बोया जा सकता है। तो उड़द के मामले में यह मतलब कोई अड़चन नहीं है, आप आराम से उस बीज को उपयोग कर सकते हैं। बस बीज साफ़ सुथरा हो और किसी प्रकार का दूसरा कचरा या जो छोटे बीज होते हैं वो ना हो।
1: तो देवपुर से आपने टेलीफोन लगाया, यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दिया। हमारे आज के अतिथि मेहमान जो है धोटे साहब, जो कि वरिष्ठ उद्यानिक विशेषज्ञ है, वो आपसे सीधी बातचीत कर रहे हैं और हमें संकेत फिर मिला है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: मेरा नाम नीतेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ।
1: नीतेश मिश्रा जी, आपने नरसिंहपुर से हमें टेलीफोन लगाया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतेश जी, आज सवाल क्या करेंगे आप?
2: जी सर, हमने अपने खेतों में अमरूद और आम के पेड़ लगाए हुए हैं। सर अमरूद है हमारा इलाहाबाद सफेदा लखनऊ 49। जब जैसे ही हमारे इन जो अमरूद के जो पेड़ हैं उनमें जब फल बनना स्टार्ट होते हैं तो फल मक्की बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो जो फल काफ़ी प्रभावित होते हैं सर, तो फल मक्की के किस प्रकार से हम नियंत्रण करें? और दूसरा प्रश्न ये कि हमने अपने खेत में भिंडी भी लगाई हुई है, उसमें एलोबीन मोजेक आ रहा है तो अर्का अनामिका में, तो उसमें हम एलोबीन मोजेक को किस प्रकार से हम कंट्रोल करें?
1: बिल्कुल, तो पहला सवाल है आपका, अमरूद के फल जो है उनमें जो है कीट फल मक्की लग रही है।
2: जी।
0: और दूसरा
1: है भिंडी में जो है बीमारी है।
0: ये दोनों ही समस्या जो है ये पूरे भारत में जो भी अमरूद लगाते हैं और जो भी भिंडी लगाते हैं दोनों के लिए ही है। दोनों की समस्या बहुत ही सामान्य समस्या है और इसका उपचार जो हर बार बताते हैं वैज्ञानिक हो या विशेषज्ञ हो तो वो इसी बात को बार बार बताते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इसका सही नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मैं आपको फल मक्खी के बारे में बताना चाहता हूँ, अमरूद की फल मक्खी के बारे में। तो जो अमरूद का फल जैसे ही फूल से फल बनने लगता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसी समय एक ततैया, आपने लाल ततैया देखा होगा, वो ततैया का छोटा रूप लाल नहीं होकर के थोड़ा पीला भूरे रंग का या बादामी रंग का वो कीड़ा होता है और वो उसके जो पीठ का हिस्सा है उसके पीछे एक चुभोने जैसी सुई होती है, वो सुई जैसा भाग उसको चुभो कर उसमें फल में अंडे दे देता है जब फल छोटा रहता है, नाजुक रहता है। फल इधर बढ़ता रहता है, अंडा वहाँ पर सुरक्षित रहता है। जैसे ही फल पकने और नरम होने की स्थिति में आता है तभी वो अंडा फूट करके उसका लार्वा बाहर निकलता है और वही अपने फलों को खराब करता है। फल मक्खी का यदि हम नुकसान की बात करें तो दुनिया भर में अरबों रुपए की फल और सब्जियाँ ये फल मक्खी नुकसान करती है। अभी पिछले बार एक विशेषज्ञ से इस संबंध में मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ये फल मक्खी में एक विशेषता और है जो शायद आपको आश्चर्यजनक लगेगी कि इसका जब नर मक्खी से संगम होता है तो उस समय जो उसके शुक्राणु वगैरह रहती है उन शुक्राणुओं को ये संग्रहित करके रख लेती है और उसके बाद जब वो नर नहीं रहता तब भी इनमें वो क्षमता रहती है कि ये बार बार अंडे देते रहती है
1: जी,
0: और उस वजह से जो उसकी क्षमता है अंडे देने की वो बनी रहती है। लेकिन अब के इसके नियंत्रण के लिए जो है वो नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, तो अभी आजकल बहुत हार्मोन्स वगैरह आते हैं, उसके अलग अलग शीशियों में एक काटन के कपड़े माने कपास के फाये में वो थोड़ी सी दवाई लगा करके शीशियों में खिड़कियाँ बना करके और नीचे पानी भर करके उसको लटका दीजिए, उसके सुगंध से कीड़े आते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं डूब करके, तो उस तरह से नियंत्रण करें। दूसरा सवाल जो है भिंडी में एलोवेन मोजेक, तो ये सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स के माध्यम से होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए एक साधारण इंसेक्टिसाइड और नीम के तेल का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका नियंत्रण आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो नीतेश जी आपके दोनों सवालों के उत्तर दिए धोटे साहब ने और अगले किसान भाई जो है इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्य।

0: वेलकम में।
1: नमस्ते सर, राम बहारा, तहसील खनिया, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश।
0: जी शुभ नाम बताए अपना।
1: हरदयाल जाटव।
0: जाटव जी अपना सवाल करें।
1: ये कहना चाहता हूँ सर कि मानसून आने के बाद जो रुवासी बहना चाहते हैं,
0: हाँ
1: किलो रुवासी, दो तीन बीघा बहना, तो कितने क्या क्या बहना चाहिए माने?
0: मानसून आने के बाद?
1: हाँ जी,
0: नहीं मतलब मानसून आने के बाद क्या क्या आप किस चीज की बात कर रहे हैं?
1: ये पूछना चाहता हूँ, माने रुवासी बहना चाहिए, कितने बीघे में बहना चाहिए?
0: रुवासी मतलब कुछ एक्स
2: रुवासी शब्द कुछ नया है,
0: मतलब क्या गैप करना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या रहता है, कोई कर्षक विधि है क्या है?
1: माने खाली खेत पड़ा तो माने उसमें सोयाबीन बहना है माने। हाँ
0: खाली खेत में सोयाबीन आपको बोनी करनी है।
1: हाँ
0: अच्छा, तो मतलब मानसून आने के बाद में कुछ दिन छोड़ना पड़ता है क्या खेत को?
2: देखिए सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि जो हल्का फुल्का बारिश आता है तो उससे जमीन में पर्याप्त ठंडक नहीं होकर के उल्टा गर्मी हो जाती है। जैसे रोटी बनाते समय रोटी से ज़्यादा उससे निकलने वाली भाप से हाथ में जलन ज़्यादा होती है, तो ये हल्का फुल्की बारिश होती है और 40-42 डिग्री तापमान यहाँ पर रहा हुआ तो गर्म है धरती, तो उस समय अचानक बुआई नहीं करना चाहिए, पर्याप्त बारिश होने के बाद ही बुआई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि बहुत कम बारिश के समय आपने बुआई कर दी और फिर बारिश नहीं हुई तो बीज खराब होने की संभावना रहती है।
0: सही बात है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हरदयाल जाटव जी, आपने शिवपुरी जिले से टेलीफोन लगाया। अगले किसान भाई का टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी
3: सर जी नमस्कार
0: जी, आप अपना शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें, फिर हमें सवाल
3: करें। नीमत श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासुदा से।
0: भागचंद्र साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप सवाल करें।
3: बिल्कुल सर
0: जी,
3: सर हम ये कह रहे हैं जैसे हमें उलद की बोनी करना है।
0: हाँ हाँ,
3: अभी फिलहाल में पानी तो अभी गिरा नहीं है, पानी गिरने के बाद ऐसी कौन सी वेरायटी है जो हमारे लिए उपयोगी है वो बताएं।
0: मतलब उड़द की वेरायटी आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब बताएं।
2: जी देखिए साहू जी, आज का विषय विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों के लिए है और मैं भी उद्यानिकी फसलों के बारे में ही आपको जानकारी देना चाहता हूँ। चूंकि आपने उड़द की बात की है तो इस बारे में मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप स्थानीय कृषि अधिकारी से संपर्क करके वहाँ पर उपलब्धता अनुसार जो उपयुक्त किस्म है, विकसित किस्म है, उसका चयन करें और उसकी बुआई करें।
0: बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया बात है।
2: अभी चूंकि सभी बाकी किसान भाई भी सुनेंगे, आज का विषय उद्यानिकी से संबंधित है तो यद्यपि कृषि के प्रश्नों का भी मैं उत्तर दे रहा हूँ लेकिन विशेष रूप से केंद्रित उद्यानिकी पर है, तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि उद्यानिकी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो अधिक उपयोगी होगा ये कार्यक्रम।
0: सही बात है, और किसान भाइयों हम आपको बताएं आज का जो हमने विषय रखा है वो है मानसून के आगमन पर बगीचों एवं उद्यान की फसलों में सामयिक कार्य। बगीचे बाग बगीचे हम सभी जानते हैं, इस समय आम का सीजन चल रहा है ना, और भी दूसरे फल जो हैं आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, और बगीचों के साथ ही साथ जो हमारी उद्यान की फसलें हैं उनमें भी जो है कई तरह के सामयिक कार्य इस समय आप कर सकते हैं। तो इन सब सवालों को लेकर ये कार्यक्रम आज हम जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, और विशेष रूप से आपसे निवेदन यही है कि उद्यान की फसलों या बाग बगीचों से संबंधित आप सवाल करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। हमारे आज के जो विशेषज्ञ है दीनानाथ धोटे साहब, जो कि वरिष्ठ उद्यान के विशेषज्ञ है, वो आपको अच्छे से जो है हर चीज समझाएंगे। एक श्रोता लाइन पर है, चलिए उनका टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका, शुभ नाम बताएं अपना।
4: हाँ नमस्कार सर, देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: राजेश अग्रवाल जी क्या सवाल है आपका?
4: सर ये मेरे यहाँ जैसे बगीचा है करीब 10x10x10 का।
0: हाँ हाँ,
4: तो इसमें सब्जियाँ इस मौसम में कौन सी सब्जियाँ जैसे लगाना चाहिए?
0: मतलब घर में ही लगाना चाहते हैं? बिल्कुल बता रहे हैं ना।
4: जी जी हाँ, घर के बाहर ही बगीचा है मेरे।
2: अग्रवाल जी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और आपका सवाल भी बहुत ही उपयोगी है। आजकल जो व्यावसायिक रूप से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उन

0: सब्जियों में काफी मात्रा में विषैले रसायनों का कीट नियंत्रण के लिए दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है, खाद भी डाली जाती है, तो उस वजह से आजकल लोगों में घर के आसपास जो उपलब्ध भूमि होती है उसका उपयोग करके सब्जियां लगाने की जो आदत शुरू की जा रही है या शौक उत्पन्न हो रहा है, ये बहुत ही उपयोगी है। बरसात के समय में आप बहुत सारी सब्जियां भी लगा सकते हैं, जिसमें से बैंगन है, भिंडी है, अभी आप ग्वारफली लगा सकते हैं, बरबटी लगा सकते हैं, टमाटर मिर्च की पौध भी आप ला करके लगा सकते हैं। तो इन फसलों को खास तौर पे आप इस समय लगा सकते हैं। दूसरी तरफ कद्दू वर्गीय सब्जियां, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको, जैसे चाहे लौकी हो, गिलकी हो, तुरई हो, अभी आप टिंडा भी लगा सकते हैं और गिलकी, ये सारी चीज़ें, कद्दू भी लगा सकते हैं। तो ये सारी फसलें इस समय आप लगा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि बेल वाली सब्जियों को जमीन पर फैलाने के बजाय उसको सहारा देकर ऊपर चढ़ने के लिए या मंडप नुमा कुछ मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर्याप्त तो धूप लगना चाहिए, और यदि भूमि की अपने पास च्वाइस नहीं होती, जहाँ पर जगह उपलब्ध होती वहीं पर लगाते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो धूप का सामना करते हैं वहाँ पर छोटे पौधे, और जो पीछे साइड पीछे की तरफ होते हैं वहाँ पर लंबी अधिक ऊंचाई वाले पौधे आप लगा सकते हैं, उनमें आपस में पर्याप्त अंतर दे। और एक विशेष बात, चूंकि बारिश का मौसम है, खूब पानी आता है, तो जल के निकास की व्यवस्था उचित रखेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा।
1: तो राजेश अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि लगातार हमारे पास में किसान भाइयों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और हम उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी दीनानाथ धोटे साहब, जो कि वरिष्ठ उद्यानिक विशेषज्ञ हैं, कर रहे हैं। एक किसान भाई फिर लाइन पर हैं, चलिए उनका टेलीफोन ले लेते हैं।
0: स्वागत है।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर, गुड्डू चौबे बोल रहा, बमोरी ढूंढा जिला सागर से।
1: गुड्डू चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बमोरी से। आप सवाल करें।
2: जी
1: हाँ, आप सवाल करें, क्या है आपका सवाल?
2: सवाल तो आपके व्यवसाय से हटके हैं सर जी, मगर थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन बताएं।
1: अगर आप हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बिल्कुल, जो है हमारे दीनानाथ जी बैठे
2: हमारे
1: हुए हैं।
2: आम के पेड़े हैं दो,
1: हाँ,
2: तो वे हैं तो तनक पुराने, 40 साल हो ही हमारे, लेकिन बहुत छोटे फल होने लगे, पहले बहुत बड़े होते, अब तो भी अचार के काम के लिए गोठा ले जा हो भाई।
1: बता रहे हैं आपको।
0: गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है।
2: जी
0: आम तो फलों का राजा है, और
2: जी
0: आज की परिस्थितियों में और आज का अभी जो मौसम चल रहा है उसमें भी आम की बहार है बाजारों में,
2: जी
0: फल छोटा हो रहा है और अचार के काम आप ले रहे हैं केवल,
2: जी
0: ऐसा आपने प्रश्न में कहा है। तो अचार के लिए जो आम आ रहे हैं बाजार में, तो उनके भी
2: जी
0: काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं, लेकिन पहले बड़े आते थे अब छोटे आते, इसका सहज कारण ये है कि हम उसके पोषण पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। 40 साल का पेड़ है, छत्र छाया शब्द आपने छुना होगा, उसका मतलब ये होता है कि 12 बजे की जब धूप पड़ती है तब उस समय जितनी छाया पेड़ के नीचे आती है वो छत्र छाया का क्षेत्र कहलाता है। आपको करना ये है कि तने से बाहर और वो छत्र छाया के भीतर, मतलब अभी 40 साल का पेड़ है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 10 से 15 फीट तने से बाहर एक नाली खोद दीजिए 8-10 इंच की, और गुड़ाई करके उसमें खाद और पानी दीजिए। खाद के रूप में आपको गोबर खाद खूब देना है, यदि आप कर सके तो 1 से 2 किलो बढ़िया नीम की खली बारीक करके खाद में मिला करके वो डाल दीजिए, और वो जो घेरा आपने एक जो थाला नुमा बनाया है आसपास, एक नाली बनाइए गोल, उस नाली में ही पानी और सिंचाई कीजिए, पानी दीजिए और खाद दीजिए, तो निश्चित रूप से अगली बार अच्छी बहार आपके पौधों पर आएगी और फलों का आकार भी बढ़ेगा।
1: तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी उपलब्ध कराई है। और गुड्डू चौबे जी ने जो सवाल किया है, ये हो सकता है अन्य कई किसान भाइयों का भी हो,
0: निश्चित रूप से
1: क्योंकि
0: आम के
1: आम
0: बड़े पौधे जैसे बढ़ते
1: बिल्कुल
0: जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं ये
1: तो दूसरे
0: परिस्थिति है।
1: किसान भाई भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे कि जैसे कि दोटे साहब ने बताया कि आम या कोई भी बड़ा पौधा होता है अक्सर उसमें जो है अगर इस तरह से खाद की व्यवस्था करनी है।

0: तो उसके छाया के
1: सामान्य
0: अंदर।
1: तौर पे जो व्यावसायिक बगीचे लगाते हैं उनको छोड़ करके बाकी बगीचों पर पोषण के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता
0: सही बात है। तो ये
1: है।
0: कुछ
1: तो यदि
0: आपने सही
1: उनका
0: तरीका
1: ध्यान
0: बताया,
1: थोड़ा सा रखेंगे
0: बिल्कुल
1: और केवल पानी और गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में देंगे तो भी फलन अच्छी तरह
0: जी।
1: से होने
0: धोटे
1: लगेगा।
0: साहब एक किसान भाई लाइन पर है, हम उनका टेलीफोन
1: स्वागत
0: लेते
1: है
0: हैं।
1: उनका।
0: जी नमस्कार, आप अपना सवाल करें, नाम बताएं पहले तो।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश शिमला से आपने टेलीफोन
1: क्या
0: लगाया
1: बात
0: है,
1: है।
0: क्या सवाल है
2: जी
0: आपका?
2: जी जी मेरा सवाल ये कि जैसे कि जो मक्का लगाना चाहते हैं अपने गांव में,
0: मक्का,
2: तो इसमें जो कौन कौन सी जो है मक्का लगा सकते ताकि हमारे प्रदेश में इसका उत्पादन ज़्यादा हो।
0: शिमला हिमाचल प्रदेश में आप मक्का लगाना चाहते हैं और इसकी वैरायटी आप जानना चाहते हैं, ऐसा है
2: जी
0: ना? तो
2: जी
0: धोटे
2: जी
0: साहब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं।
1: क्या शुभ नाम बताए किसान बंधु जी ने?
0: राकेश जी हैं शिमला से।
1: राकेश जी, पहले तो आपको इतनी दूर से भोपाल आकाशवाणी की
0: जी
1: तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है।
2: जी
1: और आज का मुख्य रूप से विषय तो उद्यानिकी पर है, पर आपने मक्का के संबंध में प्रश्न किया है।
2: जी जी
1: मक्का में अलग अलग निजी कंपनियों की बहुत सारी प्रचलित किस्में है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में कौन से बीज उपलब्ध है और
2: जी
1: अन्य किसान भाइयों ने उनको सफलतापूर्वक किया वो कौन सी किस्में हैं, क्योंकि
2: जी
1: इन किस्मों में एक मतलब ये है कि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग तरीके की किस्मों को पसंद किया जाता है और उन्हीं किस्मों को की उपलब्धता वहाँ पर होती है। तो मेरा
2: जी
1: आपको सुझाव है कि आप क्षेत्रीय कृषि विभाग के अधिकारी से एक बार संपर्क करके और फिर मक्का की किस्मों का चयन करें तो ज़्यादा लाभ होगा।
2: जी जी जी जी जी धन्यवाद
0: जी राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिमला हिमाचल प्रदेश से हमें टेलीफोन लगाया और इतनी बढ़िया जानकारी आपने ली। लगातार हमें टेलीफोन कॉल्स मिल रहे हैं, लगातार हमारे किसान भाई लाइन पर आ रहे हैं और वो अपनी समस्याएं अपनी जिज्ञासाएं हमें बता रहे हैं, और फिर हमें संकेत मिल रहा है कि किसान भाई का फोन आ रहा है। चलिए हम उनका टेलीफोन लेते हैं। जी
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में। शुभ नाम बताएं, स्थान भी बताएं और फिर सवाल करें।
2: जी श्रीमान जी, सर जी मेरा नाम है प्रणाम सिंह रजक,
0: रजक साहब,
2: ग्राम
0: जगह
2: बापू छितीपुर, ग्राम पंचायत छितीपुर, तहसील करेरा, जिला सीपरी, आपका नियमित श्रोता मित्र प्रणाम सिंह रजक। श्रीमान
0: जी, रजक जी आप सवाल करें।
2: जी मैं ये जानना चाहता हूँ सर
0: जी
2: जी, मुझे मूंगफली की फसल लगाना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी अपने मध्य प्रदेश में और अपने मेरे सीपी जिले में कब मौसम मतलब वो मानसून आ जाएगा और क्या तारीख से वो बोनी करें मूंगफली की।
0: मूंगफली की फसल लगाना है, मानसून कब आएगा ताकि हम बोनी करें, ये आप जानकारी चाहते हैं।
2: जी
0: तो
2: श्रीमान जी बिल्कुल,
0: बिल्कुल धोटे साहब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं।
2: जी श्रीमान
1: देखिए, अभी आपने समाचारों में भी सुना होगा कि मानसून की दस्तक शीघ्र अपने दक्षिण भारत की ओर से हो रही है। और
0: और अभी 9-10 तारीख को तो बारिश भी बताई है
1: हाँ,
0: आपने।
1: अभी निकट भविष्य में 9-10 तारीख को बारिश की संभावना है और कुछ अनुमान के हिसाब से 16 से 20 के मध्य भी बारिश पुनः आने की संभावना है।
0: बिल्कुल
1: तो चूंकि मूंगफली के बीज जो है बहुत नाजुक होते हैं, तो आप उसको ये देखिए कि पर्याप्त बारिश हो जाए, पर्याप्त नमी खेत में रहे, तभी आप बुआई करें। अन्यथा बीज की नुकसान होने की संभावना हो सकती है, तो पर्याप्त बारिश हो जाए तभी आप करें। जो संभावना मैंने आपको बताई है, ये आप अनुमान जो मौसम विभाग और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली उसके आधार पर मैंने बताया है। कृपया तदनुसार कार्यवाही करें। और अधिक विशेषज्ञ मतलब विशिष्ट जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद रजक साहब, आपने मूंगफली लगाने की जानकारी ली और चूंकि हमें संकेत मिल रहा है किसान भाई का टेलीफोन आ रहा है, चलिए उनका टेलीफोन सुनते हैं। जी नमस्कार। हाँ
2: नमस्कार सर, हेलो,
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर, मैं आज विषय नहीं सुन पाया, हमारे बिजली नहीं थी, जानकारी
0: विषय बहुत आसान है, उद्यान की फसलों बाग बगीचों में इस समय आपको क्या करना है, ये आज का विषय है। आप स्थान का नाम बताइए, कहाँ से टेलीफोन लगाया आपने?
2: जी मैं नरेंद्र नागी बोल रहा हूँ जिला सीहोर से।
0: नरेंद्र दांगी जी, सीहोर से आपने टेलीफोन लगाया है, बहुत अच्छी बात है, हमने विषय बता दिया, आप सवाल करेंगे।
3: सर मेरा ये सवाल है, अपने आम के

0: पौधे हैं सर, उनमें कहीं कहीं की केरियों में काले जो निशान पड़ रहे हैं,
1: आम
0: यानी
1: के पौ
0: फलों में।
1: आम के अच्छा, जो केरियां हैं, फल हैं, उनमें काले निशान पड़ रहे हैं।
0: जी,
2: तो ये छोटे छोटे निशान है कि बड़ा धब्बा है?
0: हाँ जी सर।
2: नहीं, बड़ा धब्बा एक पड़ता है चोंच के स्थान पर, वो एक अलग समस्या होती है। बाकी छोटे छोटे मतलब बिंदु जैसे वो पड़ते काले, वो एक अलग समस्या है। तो क्या छोटे छोटे निशान है या बड़ा धब्बा है?
0: बड़ा धब्बा सर, बड़ा।
2: तो बड़ा धब्बा तो बोरेक्स के कारण होता है। आसपास क्या चीज, ईंटों के भट्टे हैं क्या आपके आसपास?
0: नहीं है सर, आज स्वास्थ्य है सर, मकान बने हुए हैं और ये जी मूंग लगे हुए हैं।
2: अच्छा, तो ये एंथ्रेक्नोज की संभावना इसमें लगती है। पत्तियों पर भी इसके काले काले छींटे हो सकते हैं, थोड़े से बदरंग से, मोटे से होते हैं पत्तियों के सरफेस से। तो आप उस पर जो है बोर्डोमिक्शन का छिड़काव करेंगे और ठीक तरह से उसकी छटाई, जिसमें पर्याप्त तो धूप मिल सके, पौधे के अंदर तक धूप जा सके, ऐसा यदि करेंगे तो इस समस्या का निदान अधिक होगा। और अधिक समस्या होने पर इसमें 1 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम डाइथेनियम 45 का मिला जुला छिड़काव करेंगे तो इस पर नियंत्रण अच्छी तरह से हो सकता है।
1: तो नरेंद्र दांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टेलीफोन लगाया और हमें संकेत फिर मिला है। किसान भाई लाइन पर है। चलिए, समय बहुत कम है, संक्षिप्त में सवाल करें। जी स्वागत है आपका। हाँ जी, स्वागत
3: हेलो
1: है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताएं।
3: सर जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आप नाम बताएं अपना।
3: जिला गुना से।
1: जी आप सवाल करें।
3: जानना चाहता हूँ सर के इस 5 साल का पेड़ है नींबू का।
1: हाँ, 5 साल का नींबू का पेड़ है।
3: हाँ, तो उसमें फल नहीं आ रहा है, ना फूल आ रहा।
1: बिल्कुल बता रहे हैं
2: जी। क्या इसको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलने की जगह है?
3: हाँ, धूप मिल रही ना सर।
2: हाँ, तो अब आप 5 साल का पेड़ है, करीब करीब मेरे ख्याल से 4-5 इंच मोटा हो गया होगा, 4 इंच करीब। तो आप उसको एक काम कीजिए कि उसका जो तना है उससे लगभग 3 फीट का घेरा छोड़ करके एक बढ़िया से 8 से 10 सेंटीमीटर की एक गोलाकार नाली उस पेड़ के आसपास कर दीजिए और उसमें लगभग 200 से 250 ग्राम नीम की खली, गोबर की खाद और ये दोनों खाद मिला करके, वर्मी कंपोस्ट है तो 1 से 2 किलो वर्मी कंपोस्ट उस पूरे थाले में मिला दीजिए और अच्छी तरह सिंचाई कीजिए। यदि झुरमुट जैसा पौधा हो गया है तो उसकी कटाई छटाई करके व्यवस्थित कीजिए, अगली बार जरूर फूल आएंगे उसमें।
1: बिल्कुल। तो मांगीलाल चंदेल जी, आपने टेलीफोन लगाया गुना से, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम किसान भाई हमें टेलीफोन लगा रहे हैं, अभी भी कुछ वक्त है यदि हमारे किसान भाई चाहें तो। जी हमें संकेत मिल रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना शुभ नाम बताएं।
4: नमस्कार सर जी।
1: जी आप शुभ नाम बताएं, स्थान बताएं और सवाल करें।
4: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव।
1: मनोज नामदेव जी, क्या सवाल है अपना?
4: सर जी मेरा ये सवाल था कि मेरे 4-5 कटहल के पेड़े हैं, तो मैं एक साल तो कटहल बढ़िया आया, बड़े बड़े उच गए। इस बार क्या हुआ कि बड़े बड़े कटहल छोटे छोटे रह गए सर। मैंने उसमें खाद बीज भी दिया था।
1: अच्छा।
4: और उसमें बढ़िया खाद बीज भी देता रहता हूँ, लेकिन कटहल जरूर छोटे छोटे होकर रह गए उसमें।
1: कितना पुराना पेड़ है?
4: सर पेड़ तो बहुत पुराना, 8-10 साल हो चुके।
1: 10 साल हो चुके, बिल्कुल बता रहे
4: जी।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जितने भी कटहल उत्पादक है या जिनके घर पर कटहल लगा हुआ है, सभी के लिए उपयोगी प्रश्न है। आपको भी यही ध्यान रखना है कि चूंकि पेड़ काफ़ी पुराना है, उसके पोषण पर अपन विशेष ध्यान नहीं देते हैं, चूंकि तना भी काफ़ी बड़ा हो गया और हमारी सामान्य तौर पर आदत होती है कि हम तने के पास थाला बनाकर पानी देते हैं, वहाँ पर पोषण ठीक तरह से नहीं पहुँच पाता है। तने से कम 6 फीट दूर एक नाली बना दीजिए, 8-10 इंच गुड़ाई करके उसी में अच्छी तरह से पानी भरिए और नीम की खल 1 से लेकर 2 किलो तक के बारीक करके गोबर के खाद में मिला करके उसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह पानी देंगे तो उस पर अच्छे फल आने की संभावना है। दूसरा, छोटे छोटे फल भी इसके गिरते हैं, उसके गिरने की वजह ये होती है

0: है कि वो वास्तव में फल नहीं होते हैं। जिस फल का डंठल छोटा अवस्था में ही अंगूठे जैसे या उंगली जैसा मोटा होता है, वही छोटा सा फल कटहल के रूप में परिवर्तित हो पाता है। कुल मिलाकर के पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, उसके अभाव में अच्छी तरह से उत्पादन नहीं मिलता है। तो आप पोषण का यदि पौधों का ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक उपज आपको प्राप्त हो पाएगी।
1: बिल्कुल। तो मनोज नामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। और इसी तरह हमारे तमाम किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टेलीफोन लगाकर जानकारी दी। और चूंकि वक्त हो चला है सजीव फोन इन कार्यक्रम के समापन का, अब समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम आज के हमारे विशेषज्ञ दीनानाथ धोटे साहब को भी धन्यवाद कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए,
0: बहुत बहुत
1: आपने इतनी
0: धन्यवाद।
1: महत्वपूर्ण
0: मैं एक
1: जानकारी
0: छोटी सी
1: दी।
0: बात कहना चाहता हूँ।
1: और चूंकि हम सभी जानते हैं समय की पाबंदी है, इसलिए घड़ी की सुइयां ये कह रही है कि अब समाचार जो है समापन किए जाए। आज का विषय हमने रखा मानसून के आगमन पर उद्यान की फसलों की देखभाल। विशेषज्ञ थे दीनानाथ धोटे। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, उद्घोषक नीरजा मीणा, प्रसारण सहयोगी कांता मणि, तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और अक्षय गुप्ता ने। अब महेश सोनी को दिया आज्ञा, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा जो गीत आपने सुना, इसे स्वर दिया था तलत अजीज ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। FM बैंड पर आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, समन्वित डगर, विकास की डगर।
1: किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
2: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
2: जी,
1: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
2: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, TB के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, TB एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है TB के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो TB में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में TB मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम TB की रोकथाम से लेकर TB की जांच से लेकर TB के उपचार तक हर काम करेंगे। और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक हैं उनके साथ

0: साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है, वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक

कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण

0: हैं, आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
1: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और काम करना है, और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
0: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेलकूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
0: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज

0: योग के फैन हो चुके हैं
1: जी.
0: मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है. और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है. बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है. और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है. अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा.
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक.
2: FM एंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का. श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हुए हैं. समय है कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का.

शुदा सुगम संगीत में अभी आपने सुना हैरी आनंद को, उसके पहले आपने जो पंजाबी पॉप सॉन्ग सुना था उसे गाया था मिल्की सिंह ने। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको अदनान सामी के स्वर में ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ पॉप म्यूजिक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएमएन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन

0: क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर यह पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब की बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003, कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई, इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव थीं।

साल 2006 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म आई विवाह। इस फिल्म में अमृता राव के दूल्हे बने थे शाहिद कपूर।

0: यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।
1: भीनी भीनी

0: अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।
1: कल 9 बजे तुम

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही हैं शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा ऐसी शामों का मंजर बन जाता है।

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है, यूं लगता है कि यही, बस यही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

छाया गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

मौसम सीधे मन पर असर डालता है, इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार, सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर।

जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार रहा है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, रात्रि के 10:30

बाहर आने तक फिल्म के लिए ये मधुर आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों में दूसरा गीत फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें आप सुनेंगे कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की।

श्रोता अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बस इतना सा ख्वाब है का ये गीत।

0: एस पी बाल सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीत।
1: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

0: सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।